कह दो कि मौत जिससे तुम भागते हो वो तो तुम्हारे सामने आकर रहेगी, फिर तुम पोशीदा और जाहिर के जानने वाले मालिक की तरफ लौटाए जाओगे, फिर जो कुछ तुम करते रहे हो वो सब तुम्हें बताएगा। मोमिनो, जब जुमे के दिन नमाज के लिए अजान दी जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ लपको और खरीदो फरोख तर्क कर दो, अगर समझो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है। फिर जब नमाज हो चुके तो जमीन में फैल जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो और अल्लाह को बहुत बहुत याद करते रहो ताकि कामयाब हो जाओ। और जब उन लोगों ने सौदा बिकता या तमाशा होता देखा तो उधर भाग लिए। और ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हें खुतबे में खड़ा छोड़ गए। कह दो कि जो चीज अल्लाह के हां है वो तमाशे और सौदे से कहीं बेहतर है और अल्लाह सबसे बेहतर रिस्क देने वाला है। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।

ईरान सां मामला बहितरी तरह वधी रहिया आहिनि। ईंदड़ हफ़्ते ताईं वॾी अगबराई थी सघे थी। थी सघे थो त मुश्तफ़ा खामनेई सां बि कंहिं मौक़े ते मुलाक़ात थी वञे। मुआदे ते मुंहिंजे सही बाद अब्राहिमोस खोलियो वेंदो। बमबारी खां वधीक नाकाबंदी बहितर कम करे रही आहे। ईरान खे एटम बम ठाहिण जी इजाज़त न ॾींदासीं। रिचार्ज थियल यूरेनियम हराल में कब्ज़े में वठंदासीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त असां अब्राहिम हुर्मुस ऐं लिबनान वारे मामले खे धार रखण जी कोशिश करे रहिया आहियूं। हिज़्बुल्लाह इसराइल ते हमला न करण जी ख़ातिरी कराई आहे। मुंहिंजे ख़्याल में असां ईरान सां मुआदे जे वेझो आहियूं।

अमेरिका सां ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो मुअतल न आहे। ॿई मुल्क हिक ॿिए जे मुसवदे जो जाइज़ो वठी रहिया आहिनि। ईरान जे परे वज़ीर अब्बास इराकी लिबनान जी टीवी खे इंटरव्यू ॾींदे चयो त ईरानी फ़ौज अमरीकी फ़ौज जी अॾनि ख़िलाफ़ दिफ़ाई कारवायूं करे रही आहे। ईरान कंहिं बि अग्राई जो फौरी ऐं इसराइतो जवाब ॾियण जी सघ रखे थो। इसराइल जेकॾहिं बेरूत ते हमिलो कयो त ईरान जो जवाबु इसराइतो हूंदो। ईरानी परे वज़ीर अब्बास इराकी जा पाकिस्तान सऊदी अरब तुर्किया कतर मिस्र फ्रांस जे परे वज़ीरनि सां टेलीफोनिक राबता। जापान में ईरानी सफ़ारतखाने मौजूदु ईरानी परे वज़ीर फील्ड मार्शल आसमूरी सां टेलीफोनिक ॻाल्हि ॿोल कई आहे। ज़रियुनि मौजूदु जंगबंदी आबनाए हुरमुज़ जी नाकाबंदी ऐं खिते जी मजमूई सूरत हाल ते ॻाल्हि ॿोल कई आहे।

हैदराबाद में जीएसएन रैबर कमेटी जो इजलास सिंध दरिया ए मसलन के कब्जे वाले पॉलिसियन की मजम्मत रियाज चांडे की सदारत हेठ थियल इजलास में डॉक्टर नियाज कालानी नवाज जहूर अनवर बुर्ती बिन शिरकत कई सिंध सियासी सूरत हाल सिंधु दरिया में पानी की खोट तकरारी कैनाल की अरावत दायर की आबादकारी माली अवार्ड में सिंध के हकन से दाड़े ए वधंदड़ मजहबी इंता पसंदी से गंती रहा सिंध खिलाफ़ साजिशों के नाकाम बनाने ए वसीलन जो तोहफ़ शेखनी बनाने जो मुतालबो।

0: बस आ रही हूँ और अब करना ये है कि तमाशा करूँ. तमाशा ये कि एक दो ट्रांस अपनी कमीजें फाड़े और तुम लोग ऐसे वीडियो बनाओ कि हमें यहाँ बुलाया बेनजीर जरदारी ने. मतलब हम आए थे शिकायत लेके, केस लेके, इसने बोला है तुम्हारे बाप का कमरा नहीं है, निकलो यहाँ से. SSP को बोलूंगी, SSP FIR करेगा. ऐसा कभी भी नहीं हुआ. हमारी IG से अपील है इस तरह की वीडियोज बनाओ और इसको जलील करो, और इतना जलील करो कि पूरी दुनिया देखे. मैं आ रही हूँ, बस निकल रही हूँ. ये बस ये कर दो ना बहन की तुम लोगों की, मैं पूरी जिंदगी मेहरबान रहूंगी कि वाकई मेरा जो भी फ्यूचर हो, वाकई मैं कहूंगी कि कम्युनिटी मेरे साथ खड़ी रही कि मारिया ऐसी, मारिया ऐसी. मैडम मारिया का इसने मीडिया ट्रायल कैसे कराया? उसने 5 साल हमारे सर पे खड़े होके जो है ना वो काम किया. ये कैसे कर सकती? आज इतना चिल्लाओ कि पूरा ऑफिस मुझे रिक्वेस्ट करे. मुझे फोने आ रही हैं दो लोगों के, SSP के पास भी, इधर भी शोर मचाओ. बोलो हम तो आज प्रोटेस्ट करेंगे, भले SSP हम FIR करे, लाठी चार्ज करे, जो करना है करे. इसने हमारी मैडम का मीडिया ट्रायल कराया कैसे? वकीलों के कहने पे.
1: SSP हैदराबादी ऑफिस में ख्वाजा सलाम जो एहतजाज मनसूबा बंदी था थियो. मारे सारे ख्वाजा सरा पिनकी जी मोबाइल आईडियो लीक थी वही आईडियो में मारे सारे ख्वाजा सरा की हिदायत कर रही है. SSP ऑफिस में तमाशो करो आए कुछ ख्वाजा सरा पैंजा कपड़ा फाड़े हवा वीडियो टाइम SSP सामू रड़ी कियो चो तो भली जो करो आए हवा असाजी मैडम जो मीडिया ट्रायल किए करायो. ख्वाजा सरा ने एहतजाज दौरान इंस्पेक्टर बेनजीर सरदारी के कुर्सी से हटाए संदर चाय थी मारिया सारियों के विहारियों हो. वाके बाद पुलिस मारिया सारियों के गिरफ्तार करे वरतो. मारिया सारियों समेत 15 ख्वाजा सरान खिलाफ केस दाखिल IG सिंध विभाग के जो नोटिस वे मारिया मामले की जांच जो खुंजी छोड़ो. विजय गोठ मां टन बार मां प्रसाद नमूने कुम वारसन के अगुवा छको NC दाखिल गोठ दीनल शाह कॉलोनी मां टन बार मां जोया बेगम मंगी प्रसाद नमूने गुम थी हुई और वारसन जो एहतजाज बाजियाब करण जो मुतालबो. गिरोलो मां बे 17 साल की नारी मोबाइल तौर अगुआ टन जन खिलाफ केस दाखिल. नौशर फिरोज में फुल रेगुलेटर वट मोटरसाइकिल समेत रोड़ी केनाल में किरियल बिन जणन में एक जणे जो लाश हथ बेजी गोला जारी. रेस्क्यू टीम रोड़ी केनाल में नौजवान गुलाम अली उर्फ मेहता वगण जो लाश हथ कियो. निगर अली डिनो जी गोला जारी.

अब्दुल रहीम असांखे जन मैसेज कयो आहे चवंदा अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम उन्हनि चयो आहे त मोरो की शान सिंध की पहचान मैडम लीला कैसी हो जी वालेकुम सलाम अब्दुल रहीम अलहमदिल्ला आऊं ठीक आहियां तव्हां ॿुधायो तव्हां कहिड़ा हलाइणा आहियो कीअं आयो ऐं उमेद कयां थी तव्हां बि ख़ुशि ऐं आबाद हूंदो ऐं अब्दुल रहीम तव्हांखे आऊं पंहिंजे प्रोग्राम रोशन सुबुह में भलीकार चवां थी।

टेलीसिन असां चयो त यादा परवीन जे आवाज़ में तमामु घणो ख़ूबसूरत सॉन्ग आहे, सिराइकी में तमामु घणो प्यारो काफ़ी आहे ऐं मूंखे तमामु घणी पसंदि ईंदी आहे ऐं अचो त हिनखे गॾिजी इंजॉय कंदा हलूं था।

मुंहिंजी खान पठान असांखे मैसेज कयो आहे दोबारा त लीला ऐं पिशावर हलियो वेंदो मां हुन खां पोइ ख़बर न आहे त वरी कॾहिं आऊं अचां तव्हांजे प्रोग्राम खे ऐं जॉइन कयां। पोजी खान तव्हांखे अलाह ताला ख़ुशि रखंदो या आबाद रखंदो, तव्हां जिते बि हूंदो ख़ुशि हूंदो ऐं अलाह ताला जी हिफ़्ज़ो अमान बि हूंदो। तव्हां बाबा कंहिंजा बचा आहियो, तव्हां बि कंहिंजा आणरा आहियो, अहिड़ी ॻाल्हि न आहे। तव्हांखे रब साईं पंहिंजे हिफ़्ज़ अमान में रखंदो, अलाह ताला कंदो तव्हां खेर सां वापसी ईंदो ऐं खेर सां वापसी अची असांजे प्रोग्राम खे ज़रूरु तव्हां जॉइन कंदो।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: कई मौके ते मुलाकात थी वजे मुआदे ते मुझे बेहतर कम कर रही है। ईरान के एटम बम ठहण की इजाजत न दींदी। रिचा थे यूरेनियम हराल में कब्जे में वी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चो है असा आबदा हुर्मुस लिबनान वे मामले के धार रखने की कोशिश कर रहे हूं। हिज़्बुल्लाह इसराइल से हमला न करने की खातिरी कराई है। मुझे ख्याल में असा ईरान से मुआदे के वेझो आयो।

अमेरिका सां ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो मुअतल न आहे। ॿई मुल्क हिक ॿिए जे मुसवदे जो जाइज़ो वठी रहिया आहिनि। ईरान जे परे वज़ीर अब्बास सिराकी लिबनान जी टीवी खे इंटरव्यू ॾींदे चयो त ईरानी फ़ौज अमरीकी फ़ौज जी अॾनि ख़िलाफ़ दिफ़ाई कार्रवाइयूं करे रही आहे। ईरान कंहिं बि अग्राई जो फौरी ऐं असराइतो जवाब ॾियण जी सघ रखे थो। इसराइल जेकॾहिं बेरूत ते हमिलो कयो त ईरान जो जवाब इसराइतो हूंदो। ईरानी परे वज़ीर अब्बास सिराकी जा पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, कतर, मिस्र, फ्रांस जे परे वज़ीरनि सां टेलीफोनिक राबता। जापान में ईरानी सफ़ारतखाने मौजूदु ईरानी परे वज़ीर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सां टेलीफोनिक ॻाल्हि ॿोल कई आहे। ज़रियुनि मौजूदु जंग बंदी आबनाए हुरमुज़ जी नाकाबंदी ऐं खिते जी मजमूई सूरत हाल ते ॻाल्हि ॿोल कई आहे।

तो इस तूफान ए बरसातन बाद लाड़कन समेत मुख्तलिफ़ ज़िलनि जी बंदि कयल बिजली बेदी बिबाल न थी। सख़्त गर्मी सबबि रहवासी सख़्त परेशान। सेबको बंदि थियल 46 ग्रिड स्टेशन मां 27 खे बहाल करण जी दावा करे छॾी। सेबको चीफ चयो त बिजली फराहम कंदड़ टावर किरण सबबि ग्रिड स्टेशन बंदि थियो आहे। बंदि थियल 46 ग्रिड स्टेशन मां 27 खे बहाल कयो वियो आहे। ॿियनि जी बहाली जो कमु जारी आहे। बिजली जी मुकमल बहाली में 72 कलाक लॻी सघनि था।

हैदराबाद में जीएस सिंध रहबर कमेटी जो इजलास सिंध दरिया ए मसीलन के कब्जे वाले पॉलिसियों की मुजम्मत रियाज चांडे की सदारत हेठ थियल इजलास में डॉक्टर नियाज कालानी नवाज जहूर अनवर बुर्ती बेन शिरकत कई सिंध सियासी सूरत हाल सिंधु दरिया में पानी की खोट तकरारी केनाल की अरावत दहर की आबादकारी माली अवार्ड में सिंध के हकन से दाड़े ए वंदड़ मजहबी इंता पसंदी से गंती रहा सिंध खिलाफ़ साजिशों के नाकाम बनाने वसीलन जो तोहफ़ शेखनी बनाने जो मुतालबो।

0: बस आ रही हूँ और अब करना ये है कि तमाशा करूँ. तमाशा ये कि एक दो ट्रांस अपनी कमीजें फाड़े और तुम लोग ऐसे वीडियो बनाओ कि हमें यहाँ बुलाया बेनजीर जरदारी ने, मतलब हम आए थे शिकायत लेके केस लेके, इसने बोला है तुम्हारे बाप का कमरा नहीं है, निकलो यहाँ से, SSP को बोलूंगी, SSP FIR करेगा. ऐसा कभी भी नहीं हुआ. हमारी IG से अपील है इस तरह की वीडियो बनाओ और इसको जलील करो और इतना जलील करो कि पूरी दुनिया देखे. मैं आ रही हूँ, बस निकल रही हूँ. ये बस ये कर दो ना पिंकी तुम लोगों की, मैं पूरी जिंदगी मेहरबान रहूंगी कि वाकई मेरा जो भी फ्यूचर हो वाकई मैं कहूंगी कि कम्युनिटी मेरे साथ खड़ी रही कि मारिया ऐसी मारिया ऐसी. मैडम मारिया का इसने मीडिया ट्रायल कैसे कराया, उसने 5 साल हमारे सर पे खड़े होके जो है ना वो काम किया, ये कैसे कर सकते. आज इतना चिल्लाओ कि पूरा ऑफिस मुझे रिक्वेस्ट करे, मुझे फोन आ रही है दो लोगों के, SSP के पास भी, इधर भी शोर मचाओ. बोलो हम तो आज प्रोटेस्ट करेंगे, भले SSP हम FIR करे, लाठी चार्ज करे, जो करना है करे. इसने हमारी मैडम का मीडिया ट्रायल कराया कैसे वकीलों के कहने पे.
1: SSP हैदराबाद जी ऑफिस में ख्वाजा सलाम जो एहतजाज मनसूबा बंदी थियो मारे सारे ख्वाजा सलाह पिनकी जी मोबाइल आईडियो लीक थी वही आईडियो में मारे सारे ख्वाजा सलाह की हिदायत कर रही है. SSP ऑफिस में तमाशो करो आए कुछ ख्वाजा सलाह पैंजा कपड़ा फाड़े हवा वीडियो टाइम SSP सामू रड़ी कर चो तो भली जो करो है हवा असि मैडम जो मीडिया ट्रायल किए करा ख्वाजा सलाह ने एहतजाज दौरान इंस्पेक्टर बेनजीर जरदारी के कुर्सी से हटाए संद चाय मारे सारे के विहारे हो वाके बाद पुलिस मारे सारे के गिरफ्तार कर वरतो. मारे सारे समेत 15 ख्वाजा सलाह खिलाफ केस दाखिल IG सिन विभाग के जो नोटिस वे मारिया मामले की जांच जो हुक्म दी छो. सुरे गोठ मां टिन बारन की मां प्रसाद नमूने कुमार सन के अगवा छको NC दाखिल गोट दीनल शाह कॉलोनी मां टिन बारन की मां जोया बेगम मंगी प्रसाद नमूने गुम थी हुई और जे वारसन जो एहतजाज बाजियाब करण जो मुतालबो गिरोलो मां बे 17 साल की नारी मोबाइल तौर अगवा टिन जन खिलाफ केस दाखिल. नशर फिरोज में फुल रेगुलेटर वट मोटरसाइकिल समेत रोड़ी केनाल में किरियल बिन जणन में एक जणे जो लाश हथ बेजी गोला जारी. रेस्क्यू टीम रोड़ी केनाल में नौजवान गुलाम अली उर्फ मेहता वगण जो लाश हथ कियो. निगर अली डिनो जी गोला जारी.

ऐं बर्तानिया जे शहर सोर्टन में हेलीकॉप्टर किरी तबाह। रॉयल नेवी जा टे अहलकार मारिजी विया। बर्तानवी बचाव खाते हादसे जी तस्दीक कयो त रॉयल नेवी जो हेलीकॉप्टर तरबियती मश्क दौरान किरी तबाह थियो।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघि, ज़ुकाम, दिल जी तकलीफ़, अधु मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलन, फालेज, शुगर, दिमागी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी ऐं बादी बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, बरोज़ जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस: हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
2: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
3: सुनते रहो GFM 90.8।

गाजी खान लड़कन खां संग मैसेज कयो आए गुलाम सरवर सुमरो बाजी आज ईदल गदीर है अच्छा कसीदा सुनवाओ हमेशा खुश रहो और आपका प्रोग्राम हम सुन रहे हैं और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है थैंक्स जी मेहरबानी गुलाम सरवर सुमरो साहब तवाजी तमाम घणी मेहरबानी आई तवा के भी दे गदीर जो तमाम घणी मुबारक जन आई तवा के आऊं पे प्रोग्राम रोशन सुबह में भलीकार चवा जी

जी हाँ, दिल बच बच तो खा प्यार डुख्यो है। वाकई पंहिंजे दिल खे न काबू करे रखो। दिल जे कंहिं सफ़ा नड़े वार वांगुरु हूंदी आहे, पोइ जंहिं शइ खे ॾिसंदी आहे उते अड़ी पवंदी आहे, पोइ वरी अज़ाब में विझराईंदी आहे, ख़ासि करे छोकरनि खे पोइ वरी जेल ॾेखारींदी आहे। सो हिन लाइ पंहिंजी दिल खे तमामु घणो ख़्यालु सां ऐं काबू रखो, ॿधे रखो, मतिलबु लॉक करे रखोसि, मथां किना हली वञेव।

तुंहिंजी ॻाल्हि ते आहे एतबार कहिड़ो, घुमी गॾु ॿिए सां तुंहिंजो प्यारु कहिड़ो। तुंहिंजी दिलि में दोखो, तुंहिंजे मन में दोखो, कचा कोल तुंहिंजा, तुंहिंजो इश्क ओखो, कजे तुंहिंजो हाणे इंतज़ारु कहिड़ो। मुंहिंजी दर्द मां ॼण तूं बेखबर आ, तूं बेवफ़ा आ, तूं बेक़दरो आ, कजे तुंहिंजो सुहिणा दीदार कहिड़ो। जोखे पांधनि सां निभाई न नातो, सचीअ प्यार मोहबत मां तो न ॼातो, भला तुंहिंजो तोखे कहिड़ो लाचार कहिड़ो।

जी हाँ, रुगो अजकल ने दुनिया में रुगी ने सियासत पहले आई प्यार मोहब्बत जेको बन सब कुछ रुगी ठगिया आई केयर भी केंजो कोने को बाबा थोड़ो ही नसीहत वा सब जेला इने लाना पेंजो थोड़ो एहतियात रखो दिल जी मोहब्बत जी प्यार जो आई पेंजो खास करे कदर कयो आई पेंजो पान के थोड़ो बचाए दुनिया सब अजकल ने ठग बाज आई धोखे बाज लगी पई था इन दिल नंढड़ी हूँ फांसी वही वरी तेठा मुआ गुरताड़ी वजाइव तो

0: थोरो के हो
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।

क्वेश्चन सुबह में शामिल थे जो तमाम घणो आसानी सलो तरीको है मां पहिरों तव्हांखे ॿुधाए चुकी आहियां वरी आउं ॿुधाईंदे रहां थी नोट कयो पंहिंजो मोबाइल खणो राइट मैसेज ऑप्शन में एम आर लिखो स्पेस ॾियो कैमसन फरमाइश कयो ऐं कंहिंजे नाले डेडिकेट कयो पंहिंजे घोट या पंहिंजे शहर नालो लिखी प्लेट वन ते सेंड कयो यानी 8881 ते मोकिलियो तमाम घणो प्यारो ऐं ख़ूबसूरत सॉन्ग आहे मुमताज़ लाशारी जे आवाज़ में त सभु ॻाल्हि क़िस्मत जी आहे हक़ीक़त हिन में कोई शक बि न आहे अचो त सॉन्ग खे गॾु इंजॉय कंदा

0: जी हां आई तवा के अल्लाह तआला करनी है ना लेली माप त लेला या पोता वान ली अखा दिसण वारी ना है
1: वे बुलिया जिथे दिल अड़ जाए
0: ते की काली की गोरी।

हिज़्बुल्लाह खे इसराइल ते हमला रोकण सां गॾु लेथानी वारो इलाइक़ो ख़ाली करणो पवंदो। पायलट ज़ोन्स ठाहिया वेंदा जिन ते लबनानी फ़ौज जो कंट्रोल हूंदो।

0: सिंध में पानी की खोट 45 सैकड़ों तक पहुंची वही 130,000 क्यूसिक घुर्ज के बावजूद सिंध के रुगो 72,000 क्यूसिक पानी मिलने लगो। पंजाब तोसा पंजनद लिंक कैनाल जरिए 12,200 ग्रेटर थैलाल थल कैनाल जरिए 3,000 चश्मा झलम लिंक कैनाल जरिए 12,800 क्यूसिक पानी गैर कानूनी तौर खणने लगो। फैज़गंज भर से फैज़बाह के लगल घारो वधी 80 फुट थी वो आरडी 48 वटा वाह के लगल घारे जो पानी फसल बोड़ने बाद गोठन में दाखिल तलाब बावजूद आपस अमलदार न पहुंचा इलाके वासन पारा घारो बंद करने जो कोशिशों जारी गोठान जो चवण है तो बंद कमजोर होने सबब वाह के घारो लगो है। ठहरी मीरवा भरसा मेहरान हाईवे से रोड हादसों एक जनो फौत और रस्ते में 3 जना जख्मी गिणती जुगी हालत में अस्पताल मुंतकिल।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हा, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरण में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिल जी तकलीफ़ अधु मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन फालेज शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी बादी बवासीर इन्हन सबनिन बीमारन जो कामयाब इलाज कयो विंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोजानो सुबह 9 खां शाम 6 ताईं परोस जुम्मो 12 ताईं एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर वधिक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
3: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
4: सुनते रहो GFM 90.8।

रखो तो ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके या सब तक पहुंचाएंगे. एंड आप लोग मुझे कमेंट भी कर सकते हैं. कमेंट करने का तरीका कार बता चुकी हूँ. कॉल की जा सकती है. कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03000113488. तो जरूर कॉल कीजिएगा, जो कि नंबर मैं आपको बता रही हूँ उस नंबर के ऊपर. और साथ साथ हमारे दो सेगमेंट्स होते हैं जी, जिसमें से हमारा पहला सेगमेंट होता है जी सुर लगाओ गाना सुनाओ में. जो बंदा कॉल पे आता है वो गाना उसी टाइम पे, जो कॉलर गा के सुनाता है वो गाना उसी टाइम पे प्ले कर दिया जाता है. इसके अलावा हमारा अगला सेगमेंट होता है 12 बजे के बाद, क्योंकि आज हमारे पास एक एडिशनल सेगमेंट है जिसका नाम है हरा भरा पाकिस्तान, जिसको आप बड़े शौक से और गौर से सुनते हैं, तो वो भी होगा. और साथ साथ हमारा जो बोलो तो माने सेगमेंट है वो फिर उससे थोड़ा सा आगे चला जाएगा, यानी कि फिर वो हम 12:30 बजे के बाद कर रहे होंगे. ठीक है, तो ये होगा. और इसके साथ से जी सेगमेंट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जी, कॉल करने के बाद. जिन लोगों को बहुत अच्छा बोलना आता है, बहुत अच्छा बोलना जानते हैं, सो दैट वो मेरे प्रोग्राम में शामिल होके टंग ट्विस्टर बोल सकते हैं. टंग ट्विस्टर वाला सेगमेंट जिसको हम कहते हैं बोलो तो. ठीक है जी, और इसके अलावा गाने को चेंज करेंगे जी. गाना कब से चल के या घिस चुका है, इसको मजीद और नहीं घिसाएंगे. एंड हम नेक्स्ट सॉन्ग प्ले करेंगे, एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल. तो इसको सुनेंगे, एंजॉय करेंगे और आगे चलेंगे.

गीजी ब्यूटीफुल सॉन्ग सॉन्ग के साथ साथ एक और सॉन्ग प्ले करेंगे और इस सॉन्ग के साथ हम जाएंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक की जाने में. आपने कहीं नहीं जाना, मेरा साथ देना है क्योंकि आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है फ्रॉम योर फेवरेट रेडियो स्टेशन जी एफ एम रेडियो नेटवर्क सिंध की.

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: तंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ जुकाम दिल जी तकलीफ़ अध मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन फालेज शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं बरोज जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
2: की खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

दोपहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: ईरान खिलाफ जंग बाबत सदर ट्रंप जे अख़्तियार महदूद करण वारो ठहरा अमेरिकी कांग्रेस मां मंजूर। ईरान खिलाफ जंगी कार्रवाई कांग्रेस की मंजूरी से मशरूत। अमेरिकी कांग्रेस डेमोक्रेट पारा पेश कल ठहरा 215 वोट से भेट में 208 वोट से भेट में 215 वोट ना मंजूर कर वरतो। चार रिपब्लिकन सेनेटर्स भी ठहरा अज हक में वोट दिनों। ठहरा मूजिब ईरान खिलाफ कें किस्म की जंगी कार्रवाई कांग्रेस की मंजूरी का सवाल नी सी।

अमेरिका हाँ बीहर ईरान खिलाफ जंग शुरू न कह सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान से बीहर जंग तहत खी वो अमेरिका अखबार वॉल स्ट्रीट दावा कई है सदर ट्रंप तकरार जो सफारती हल चाहे तो जंग के बधाय न तो चाहे उन वेझन सलाहकार ईरान खिलाफ बीहर जंग शुरू न कई वी असांजी फौजी पोजीशन पहिरीं खां वधीक मजबूत ऐं मुस्तहकम आहे। ईरानी परदेही वज़ीर अब्बास अराग़ची चयो आहे त जंग दौरान बि तेहरान हथियारनि जी पैदावार बरक़रार रखण में कामयाब रहियो। ईरान वटि जंग जारी रखण जी सलाहियत मौजूद आहे। इन जो मक़सदु इहो नाहे त ईरान जंग जारी रखण चाहे थो। अमेरिकी चाकड़ी कामयाब इसराइल ए लबनान जंगबंदी ते इतफाक करे वरतो। वॉशिंगटन में अमेरिका की मेजबानी हेठ थियल इसराइल लबनान गालन जो गडल बदनामो जारी। बदनामे मूजिब इसराइल ए लबनान जंगबंदी ते इतफाक करे वरतो आहे। लबनान इसराइल में बीहर गालियूं 22 जून ते थींदियूं। अमेरिकी परदेही खाधे मूजिब हिज़्बुल्लाह खे इसराइल ते हमला रोकण सां गॾु लेतानी वारो इलाइक़ो खाली करणो पवंदो। पायलट ज़ोन ठाहिया वेंदा जिन ते लबनानी फ़ौज जो कंट्रोल हूंदो। वेझो कारे इल्ज़ाम हेठि बिटो कतल दे बखोरी जे ॻोठ रमज़ान शहर में जवाबदार उमीद शहर पंहिंजी ज़ाल ऐं भाउ खे कारे इल्ज़ाम हेठि क़तल कयो। मक़तूल पठाणी शहबाज़ जा लाश इस्पताल मुंतकिल। जवाबदार जी पुलिस सां गिरफ़्तार थियण जा इतला तसदीक न थी। नौशहरो फिरोज़ में सरकारी खातनि जे मुलाज़मनि जो पघारनि में वाधाए डेस्पेरिटी अलाउंस लाइ एहतजाज। सरकारी मुलाज़मनि मुतालबनि जी मंझता जे लाइ रैली कढी धरणो हुयो। मुलाज़मनि जो चवणो त महांगाई जे हिसाब सां पघारनि में वाधा कई वञे। हुकूमत मुतालबा तस्लीम न कया त एहतजाज जो दायरो वधायो वेंदो। फैज़गंज सां फैज़बाग खे लॻियल घारो वधी 80 फुट थी वियो। आरडी 48 वटां वाह खे लॻियल घारे जो पाणी फसल बोड़ियुनि बाद ॻोठनि में दाख़िल। इतलाबाद जो दापाशे मंदार न पहुता। इलाइक़े वासियुनि पारां घारो बंदि करण जूं कोशिशूं जारी। ॻोठाणनि जो चवणु आहे त बंदि कमज़ोर हुअण सां वाह खे घारो लॻो आहे। खावशाह खां दिलीप ओटा ऐं मिठियाणी तरफ़ वेंदड़ मर्कज़ी रोड जी हालति ख़राब। 4 साल गुज़रण बावजूद रोड जो कमु मुकमल न थियो। हादसा रोज़ जो मामूल बणिजी विया। रहवासियुनि जो निठण उस में धरणो। मुजाहिरनि चयो त 4 साल थी विया आहिनि रोड जो कमु मुकमल नाहे थियो। रोड ते खॾनि सबबि हादसनि में केतिरा ई माण्हू फौत थी चुका आहिनि। रोड ठाराहियो वञे। मीरपुर बुरड़ो भरिसां ज़मीनी तकरार तां बुरड़ा बिरादरी जी बिंदड़ियुनि में जेड़ो लठियूं ऐं कुहाड़ियूं लॻण सबबि 9 ॼणा ॻोठ बजबुरड़ो में ज़मीनी तकरार तां धुरियुनि में जेड़ो थियो। लठियूं ऐं कुहाड़ियूं लॻण सबबि ज़ख़्मी थियल 9 ॼणा इस्पताल में तकिन। धुरियुनि में छिकताण बरक़रार।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: हाने हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ जुकाम दिल जी तकलीफ़ अध मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलण फालिज शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं बरोज जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
2: जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

वहीं नीचे आ गया टेम्परेचर। वो इतना वो हैरान हुआ कि देखे एयर कंडीशंस के बराबर ठंडक दरख्त के नीचे है। तो इसका मतलब ये है कि हमें दरख्त ज्यादा से ज्यादा लगाना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये हमें करनी है। हमारे नेशनल कैरिकुलम में पहले होते थे दरख्तों की अहमियत, ये वो, अब वो नेशनल कैरिकुलम से हमारे निसाब से चीजें निकाल ली गई हैं।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आर जी रुखसार. आपको मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का है और आप लोग मुझे सुन रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं कमेंट्स और मैसेजेस के थ्रू. बहुत सारे कमेंट्स और मैसेजेस. मार्क किशोर कहते हैं कि क्या 12:45 हो गए हैं. हाँ जी, 12:45 होने वाले हैं. अच्छा, इकबाल लाशारी भी हमारे साथ मौजूद हैं, सोनू खान लाशारी विलेज से, मीरपुर खास से सुन रहे हैं. थैंक यू सो मच. अली अकबर बिरोही हमें सुन रहे हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. नूर हुसैन तुनियो हमें सुन रहे हैं. रुसा गुड शो, गुड आफ्टरनून, हैव अ ब्लेस्ड डे, हैव अ नाइस डे. और कहते हैं टेक केयर, बेस्ट विशेस. थैंक यू. लाइव स्ट्रीमिंग इज नॉट गोइंग ऑन. कहाँ पे? वेबसाइट पे नहीं चल रही है. लेट मी चेक. और इसी चेक करने के दौरान मैं ब्रेक पे भी जाऊंगी. जिंदगी गुलजार है.

0: जीए सखर एफएम 88
1: सखर की आवाज।
2: गर्मी, थकावट या दिल की बेचैनी महसूस कर पाया, हाने परेशान थियण की जरूरत ना है। पेश है शरबत रूहे राहत, कुदरती जड़ी बूटी मां तैयार कयल अहड़ो शरबत जेको तवा के दे ताजगी, सुकून आई हकीकी राहत, दिल की धड़कन के मुतवाजन रखन, गर्मी के असर के घटाएं, आई जिस्म के तवाने देने लाए शरबत रूहे राहत रोजाना।

0: तेरे बाद हम तुम्हारे नहीं रहे,
1: क्योंकि मैं क्रीन हूं।
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम। यहां वहां जी एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

करेंगे, नेक्स्ट सॉन्ग प्ले करेंगे और इस सॉन्ग के साथ जाएंगे हम. वैसे आप नहीं जाएंगे, मैं जाऊंगी, सॉरी मैं जाऊंगी अपने घर. ठीक है, और इसी के साथ फाइनली हम लेंगे आपसे इजाजत. तो इंशाल्लाह मेरी आपसे चिट-चैट होगी शाम 7 से लेके 8 बजे तक. एंड इस प्रोग्राम में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मंडे को ऑन सेम टाइम सेम चैनल सेम शो विद द सेम आरजे सुनना मत भूलिएगा. जिंदगी गुलजार है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. So this is me, RJ Rukhsar, signs out. Take care, goodbye. Amane khuda, Allah Hafiz.

0: सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: सिंध में ज़रई पानी जो बहरान संगीन थी वो सूबे में पानी की खोट 45 सैकड़ों तक पहुंची वही। सिंध के 58,000 क्यूसेक पानी घट मिलने लगो। सिंध के 1,30,000 क्यूसेक वाली खोज के बदला लगो 72,000 क्यूसेक पानी मिलने लगो। सिंध में पानी की संगीन बहरान बावजूद पंजाब पारा लिंक कैनाल जरिए पानी की गैर कानूनी खड़दारी। पंजाब तौसा पंजनद लिंक कैनाल जरिए गैर कानूनी तौर 12,200 क्यूसेक पानी खड़न लगो। ग्रेटर थल कैनाल जरिए 3,000 क्यूसेक पानी की खड़त जारी। चश्मा जहलब लिंक कैनाल जरिए भी पंजाब 12,800 क्यूसेक पानी गैर कानूनी तौर खड़न लगो। सिंध में गुरु बैराज से मथा वह करो 72,000 क्यूसेक से हेठा वह करो 53,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सखर बैराज मथा वह करो 53,000 क्यूसेक से हेठा वह करो 18,000 क्यूसेक थी वो। कोटली बैराज जो मथा वह करो 12,700 क्यूसेक थी वो। डाउनस्ट्रीम में पानी छोड़ बंद। पंजाब पारा फ्लड कैनाल जरिए पानी खड़त सबब सिंध में पानी जो बहरान संगीन थी वो है। ईरान खिलाफ जंग बाबत सदर ट्रंप के अख्तियार महदूद करण वो ठहरा अमेरिकी कांग्रेस में मंजूर। ईरान खिलाफ जंगी कार्रवाई कांग्रेस की मंजूरी से मशहूर। अमेरिकी कांग्रेस डेमोक्रेट्स पारा पेश कल ठहरा 208 वोट से भेट में 215 वोट से मंजूर कर वरतो। चार रिपब्लिकन सेनेटर्स भी ठहरा के हक में वोट डो। ठहरा मुजिब ईरान खिलाफ कैंबिक्स बनी जंगी कार्रवाई कांग्रेस की मंजूरी का सिवाय नी सकती।

अमेरिका हाणे ॿीहर ईरान ख़िलाफ़ जंग शुरू न कंदो। सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान सां ॿीहर जंग तां हथ खणी वियो। अमेरिकी अख़बार वॉल स्ट्रीट दावा कई आहे त सदर ट्रंप तकरार जो सफ़ारती हल चाहे थो ऐं जंग खे वधाइण नथो चाहे। हुन पंहिंजे वेझनि सलाहकारनि खे ॿुधायो आहे त ईरान ख़िलाफ़ ॿीहर जंग शुरू न कई वेंदी।

असांजी फौजी पोजीशन पहिरीं खां वधीक मज़बूत ऐं मुस्तहकम आहे। ईरानी परदेह वज़ीर अब्बास अराग़ची चयो आहे त जंग दौरान बि तहरान हथियारनि जी पैदावार बरक़रार रखण में कामयाब रहियो। ईरान वटि जंग जारी रखण जी सलाहियत मौजूदु आहे। इन जो मक़सदु इहो नाहे त ईरान जंग जारी रखणु चाहे थो। अमेरिकी चाकड़ी कामयाब इसराइल ऐं लबनान जंगबंदीअ ते इतफ़ाक़ करे वरितो। वॉशिंगटन में अमेरिका जी मेज़बानी हेठि थियल इसराइल लबनान ॻाल्हियुनि जो गॾियल पधरनामो जारी। पधरनामे मूजिब इसराइल ऐं लबनान जंगबंदीअ ते इतफ़ाक़ करे वरितो आहे। लबनान ऐं इसराइल में ॿीहर ॻाल्हियूं 22 जून ते थींदियूं। अमेरिकी परे खाधे मूजिब हिज़बुल्लाह खे इसराइल ते हमला रोकण सां गॾु लेतानी वारो इलाइक़ो ख़ाली करणो पवंदो। पायलट ज़ोन ठाहिया वेंदा जिन ते लबनानी फ़ौज जो कंट्रोल हूंदो। सीनियर सूबाई वज़ीर शहजीना महमूद जी वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी सां मुलाक़ात। अमन अमान दुबई सहकार मंशियात जे ख़ात्मे ऐं मुख़्तलिफ़ मामलनि ते ख़्यालनि जी ॾेखु। कराची समेत सिंध जे वॾनि शहरनि में मंशियात जी रोकथाम ऐं अमन अमान ते बि ॻाल्हि ॿोल कई वई। शहजीना महमूद चयो त वफ़ाक़ ऐं सूबनि विच में राब्तो ऐं सहकार क़ौमी चैलेंजेस खे मोटण जो ज़रियो आहे। सिंध हुकूमत मैट्रिक ऐं इंटर जे इम्तिहाननि जे नतीजनि जी तारीख़ जो ऐलान करे छॾियो। सूबे में मैट्रिक जा इम्तिहान जा नतीजा 10 जुलाई, इंटर जे इम्तिहान जा नतीजा 31 जुलाई ताईं जारी करण जो फ़ैसिलो। यूनिवर्सिटीज़ ऐं तालीमी बोर्ड वारे वज़ीर जी सदारत हेठि तालीमी बोर्ड जो अहम इजलास। इसाई लाहौर चयो त मैट्रिक ऐं इंटर जे इम्तिहान जा नतीजा तय थियल तारीख़नि ते जारी कया वेंदा। सामान वेझो कार इल्ज़ाम हेठि विटो क़तल ते बखोरी जे ॻोठ रमज़ान शहर में जवाबदार उमेश्वर पंहिंजी ज़ाल ऐं भाउ खे कार इल्ज़ाम हेठि क़तल कयो। मक़तूल पठाणी शहर ऐं संद ॾेर शहबाज़ जा लाश इस्पताल बंदि कई। जवाबदार जे पुलिस हथां गिरफ़्तार थियण जा इतला तसदीक न थी सघी। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में एपका जे सर ते सरकारी मुलाज़मनि जो एहतजाज। पघारुनि जे हिसाब सां पघारूं वधाइण ऐं ॿिया मसाला हल करण जो मुतालबो। सखर, नौशहरो फिरोज, नवाबशाह ऐं ॿियनि शहरनि में एपका जे सर ते एहतजाज कयो वियो। अॻवाननि चयो त हुकूमत मुलाज़मनि जा जाइज़ मसाला हल न कया त तहरीक हलाई वेंदी।

0: फैज़गंज भरिसां फैज़ वाह खे लॻल घारो वधी 80 फुट थी वियो। आर डी 48 वटां वाह खे लॻल घार जो पाणी फसल ॿोड़ण बाद ॻोठ में दाख़िल। इन खां बावजूद आबपाशी अमलदार न पहुता। इलाइक़े पारां घारो बंदि करण जूं कोशिशूं जारी। ॻोठाणनि जो चवणु आहे त बंदि कमज़ोर हुअण सबबि वाह खे घारो लॻो आहे। शाहकान दिलीप ओटा इम्तिहानी तरफ़ वेंदड़ मर्कज़ी रोड जी हालत ख़राब। 4 साल गुज़रण बावजूद रोड जो कमु मुकमल न थियो। हादसा रोज़ जो मामूल बणिजी विया। रहवासियुनि जो निटण उस में धरणो। मुजाहिन चयो त 4 साल थी विया आहिनि रोड जो कमु मुकमल न आहे थियो। रोड ते खॾनि सबब हादसनि केतिरा ई माण्हू फौत थी चुका आहिनि। रोड ठाराया वञे। मीरपुर बुरडो भरिसां ज़मीनी तकरार सां बुरडा बिरादरी जी बिंदुरनि में छेड़ो। लठियूं ऐं कुआड़ियूं लॻण सबबि 9 ॼणा ज़ख़्मी। ॻोठ बचल बुरडो में ज़मीनी तकरार सां धुरिन में छेड़ो थियो। लठियूं ऐं कुआड़ियूं लॻण सबबि ज़ख़्मी थियल 9 ॼणा इस्पताल मुंतकिल। धुरिन में छिकताण बरक़रार। सकर शहर जी 2 ॾींहनि खां बंदि थियल बिजली मुकमल तौर ते बहाल थी सघी। मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में पीअण जे पाणी जो बहरान संगीन थी वियो। घरनि में पीअण जो पाणी न हुजण करे नंढड़ा ॿारड़ा पाणी जूं बोतलूं खणी पाणी भराइण लॻा। शहरनि जो सेप्को खां शहर जी बिजली बहाल करण जो मुतालबो। फैज़गंज ऐं छरी मीरवा तालकन समेत खैरपुर ज़िले में दहशतगी अलामत बनियल धारेल शमशाद उर्फ़ संदीलो हिसबानी अदालत में पेश थी गिरफ़्तारी ॾेई छॾी। धारेल शमशाद उर्फ़ संदीलो हिसबानी छरी जी अदालत में पेश थी गिरफ़्तारी ॾिनी। शमशाद उर्फ़ संदीलो हिसबानी ते 20 खां वधीक मुक़ाबलनि ऐं धारनि जा केसिस दाख़िल थियल। दादू शहर जे बुनियादी मसइलनि जे हल जे लाइ सिविल सोसाइटी जे सर ते शहरनि जी मासूम ॿारनि समेत भुख हड़ताल। शहर मां लोड शेडिंग ख़तमु करणु ऐं बुनियादी मसइला हल करण जो मुतालबो। अॻवाणनि चयो त सख़्त गर्मीअ दौरान 18 कलाक बिजली बंदि रखी वञे थी। ॿिया मसइला बि वधी विया आहिनि। लोड शेडिंग ख़तमु करे शहर जा मसइला हल कया वञनि। एसीपी जो सूबे में मंशा जे खात्मे ऐं बदमनी ते ज़ाब्ते जे लाइ एहतजाज। एसीपी कारकुननि अॻवाननि डीपलो रोड खां प्रेस क्लब ताईं एहतजाजी रैली कढी। अॻवान चयो त सिंध जी तालीम तबाह आहे। इस्पतालनि में डॉक्टर्स न आहिनि। सूबे जा बदी मसाला हल कया वञनि। ऐं मटियारी जे सेखाट वारे इलाइक़े में रोड हादसो। गोरहारी औरत फौत संदसि मुड़ुसु मरणी। औरत कसबो ख़ासि किली जो मरण ऐं ज़ख़्मी इस्पताल मुंतकिल। ठरी मीरवा भरिसां बहिराण हाईवे ते बि रोड हादसो। 1 ॼणो फौत थी वियो। 3 ॼणा ज़ख़्मी। फौतीअ जो मरण ऐं ज़ख़्मियुनि खे इस्पताल मुंतकिल कयो वियो। उमरकोट में जीप ऐं रिक्शा में टकर। 1 ॼणो फौत। थाणोबुला खां वेझो नूरियाबाद थाणे जे हद में मोटरवे ते अणॼातल शख़्स गाॾीअ जे टकर में फौत थी वियो। मरण इस्पताल मुंतकिल।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमाम पखनि जे मुक़ाबले में टे ज़बरदस्त हवा। रॉयल इनवर्टर फैंस साथ ज़िंदगी भर का।
2: सन क्रॉप ग्रुप का डायमंड हाई। आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: हैरत अंगेज जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिलि जी तकलीफ़ अध मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलण फालिज शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं बरोज जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
4: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
5: सुनते रहो GFM 90.8।

क्या बात है, बहुत ज्यादा खूबसूरत कसीदा आप इंजॉय करें. और साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावन से. आपके सिद्धराम के साथ मौजूद है, मेरे साथ कौन है मुझे बताएंगे जी. शामिल प्रोग्राम होते जाएंगे, किस तरीके कार को फॉलो करेंगे वो मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन साथ साथ यहाँ पर आज के प्रोग्राम में आप लोगों से टॉपिक यानी कि सवाल क्या पूछूंगी ये सबसे पहले बताएंगे. तो बिल्कुल जी, आज के प्रोग्राम का जो आप लोगों से सवाल मेरा होने वाला है वो बिल्कुल ये होने वाला है कि आज आप मुझे ये बताइए कि क्या आप लोगों को अपनी चीजें शेयर करना पसंद है. कई मरतबा ऐसा हो जाता है कि हम ना अपनी चीजें शेयर करने में थोड़ा सा कतराते हैं, हमें कभी अच्छा लगता है कभी अच्छा नहीं लगता, लेकिन बहुत ज्यादा लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी अपनी चीजें शेयर नहीं करते. बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी सारी चीजें शेयर करते हैं. तो आज आप मुझे ये बताइए कि क्या आप लोगों को अपनी चीजें शेयर करना पसंद है या फिर नहीं, आप करते हैं या फिर नहीं, मुझे बताइए जल्दी से. अगर आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं पहली मरतबा रोजाना, या फिर आप घूमने वाले लिसनर्स यानी कि चोरी चोरी चुके चुके सुनने वाले लिसनर्स, तो आप क्या करेंगे, अपना सेल फोन उठाइए, भोपाल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस, दीजिए अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 888-1. ओके जी, उसके अलावा अगर आप हमें फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो जीए लारकाना FM 88.8 हमारा पेज है, और जीए लारकाना FM 88.8 आप सर्च कीजिए, आपको इजीली हमारा पेज मिल जाता है. पेज को आपने फॉलो कर लेना है, और पेज को आप जैसे ही ऑन करते हैं वहां पर आपको हमारे प्रोग्राम व्हाइट एज एंड स्किन ब्यूटी शो की लाइव पोस्ट मिल जाती है. तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए, जल्दी जल्दी से पोस्ट को शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोगों को पता चले कि भाईजान मार्केट में अब व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आ चुके हैं. तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वो आप लोगों को बताया जाएगा इस पूरे प्रोग्राम में कि आप लोगों के लिए कितने ज्यादा ये प्रोडक्ट जो है ना वो जरूरी है. तो ज्यादातर हम अपनी खूबसूरती को जो है ना वैल्यू कम दे रहे होते हैं, खूबसूरती का ख्याल नहीं रख रहे होते हैं. मर्द हजरात हो या फिर खवातीन हो जो कि खास करके हाउस वाइफ होती हैं, या फिर मर्द हजरात जो कि बहुत ज्यादा कामों काजों में बिजी रहते हैं, और बिजी रहने की वजह से वो अपनी खूबसूरती का ख्याल नहीं रख पाते. तो भाई अपनी खूबसूरती का ख्याल रखिए, जबकि आप लोगों के पास इतने अच्छे प्रोडक्ट्स मौजूद हैं तब तो आपने लाजमन अपनी खूबसूरती का ख्याल रखना है. तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों को हर तरह के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, जैसे कि आप लोगों के लिए फेस वॉश मौजूद है, साबुन मौजूद है, नाइट क्रीम मौजूद है, फेयरनेस क्रीम मौजूद है, डॉक्टर पिंपल ट्यूब मौजूद है जो कि एक्ने को खत्म करने वाला ट्यूब होगा, और उसके अलावा लोशन है, हेयर रिमूवल है, इतने सारे जो प्रोडक्ट्स है ना वो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में मौजूद है और आप लोगों को तफसीलन बताया जाएगा. उसके अलावा डी स्किन ब्यूटी क्रीम की बात करें, डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपको मिल रही है, डी स्किन फेस वॉश आपको मिल रहा है. ये तमाम प्रोडक्ट्स जो कि फुल आप लोगों के स्किन के मुताबिक तैयार किए गए हैं, ऑल स्किन टाइप के लिए है, लड़के लड़कियां सभी इस्तेमाल कर रहे हैं, खूबसूरती को बढ़ाते जा रहे हैं और खूबसूरत होते जा रहे हैं. उसके अलावा ना मिलने की सूरत में अगर आप अपने एरिया में अवेलेबल कराना चाहते हैं, करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं और आप वहां से जाकर इजीली लेना चाहते हैं, तो आपके लिए नंबर होने वाला है जो है जनाब 03-15-799-0595. जी हाँ बिल्कुल, इस नंबर के ऊपर रابطہ कीजिए, करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराई, और आकर मुझे ये मत बोला करेंगे बाजी असा के नथो मिले असा काथा वनी वठी चो. नंबर बुदाया दी ना, इन नंबर ते तमा रातो कर इनन का पुछो ते काथा वनी वठी चो. ओके जी, सो अज तमा मुखे बुधायो पया त छा तमा पांजे शेन के शेयर करण पसंद कंदा आयो. क्या आप अपनी चीजें शेयर करना पसंद करते हैं, बताएं तो जरा पता तो चले आप लोग कैसे इंसान हैं. ओके जी, इसके अलावा यहाँ पर आप लोग हमारे साथ मौजूद है, ज्वाइन करते जा रहे हैं, आदिल हुसैन हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम आदिल, कैसे हैं. गजल आपने शेयर कर दी है, लिखते हैं बाकी जो कुछ है मोहब्बत सख्त सजा लगती है, मेरी आंखों को वही शख्स भला भला लगता है, उसके आंसू भी मनाजात की सूरत है कि वो जब भी रोता है मुझे महूद हुआ लगता है, खामोशी उससे मुझे जोड़े हुए है, ये खामोशी होना चाहिए था मेरे ख्याल में. और कहते हैं कि दरमियां में कोई बोले तो बुरा लगता है, और फिर उठ ही गया उसका दुआओं से यकीन, अब तो वो शख्स खुदा से भी खफा लगता है, लम्हा लम्हा मुझे याद आते हुए शख्स बता मैं तुझे भूल सकूंगा, तुझे क्या लगता है. लगता तो नहीं.
भी जी बहुत शुक्रिया। हिदायतुल्लाह कहते हैं सलाम कैसी हो, ये इंग्लिश सॉन्ग तो लगाओ अच्छा लगेगा। ऑन द फ्लोर ओके ओके जी लगाते हैं, अच्छा ही होगा आपकी फरमाइश है तो। और वासु भाई हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम वासु भाई, चाल है खुश आयो। चाचा खाली जुड़े जो आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम चाचा खुश आयो। और ये हमारे साथ है चाचा, कहते हैं गर्मी कैसी है, गर्मी अब थोड़ी थोड़ी सही है, बारिश हुई थी ना उस वजह से थोड़ा सा माहौल जो ना वो अच्छा खासा हो चुका है। और उसके अलावा हैं जी हमारे साथ ये दर्द दिल प्यारी, वालेकुम अस्सलाम, आपकी चंदा बिल्कुल ठीक ठाक है, आप बताएं मेरी जान कैसी है। और सुफियान अहमद हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम सुफियान, वेलकम टू शो, कहते हैं नाइस शो, थैंक यू। अच्छा चाचा कहते हैं कि ताने नहीं बट व्हाइट एज लवली क्रीम का नाम आपसे बहुत सुन रहे हैं। जो चीज सुनने की होगी तो आप सुनेंगे ना, और जो चीज आप सुन रहे हैं वो आप लाजमी लगाइएगा, ठीक है। और जबार वेसर हमारे साथ ही, सॉन्ग अच्छा कहते हैं कि सिद्रा ये सॉन्ग प्ले करना, जाने इस दिल का हाल क्या होगा, आय हाय लगाते हैं जी, बिल्कुल आप सब्र कीजिए जरा। सुफियान कहती आजकल यूट्यूब यूज करती है, नहीं पता नहीं क्यों दिल्ली उठ गया मेरा। और हिदायतुल्लाह कहते हैं कि ये कल वाला टॉपिक है, नहीं तो कल मैंने पूछा था, क्या पूछा था कल मैंने, कल कुछ इससे रिलेटेड था लेकिन आज का टॉपिक थोड़ा सा मुख्तलिफ। क्या आप अपनी चीजें शेयर करना पसंद करते हैं? और अहमद हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया जी। एहसन कहती है अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, चाहला उम्मीद तो खुश हूँ, शाद हूँ, आबाद हूँ, न याद हूँ, न ही विसरन दो। और सिद्रा आप तो टॉपिक से टॉपिक निकाल लेती हैं, क्या बात है, ये यही बात है ना, मैंने यही मतलब बोला कि कल वाले टॉपिक से रिलेटेड है ये टॉपिक, कल वाला टॉपिक नहीं है, समझ रहे हैं। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक ही टॉपिक से बहुत सारे टॉपिक्स निकाल सकती हूँ, यस, बस आपने मेरा टैलेंट देखा कहाँ है। बिल्कुल जी, प्रोग्राम व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। आप इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं मुझे बताइए, और इस्तेमाल करना चाहते हैं कौन सा प्रोडक्ट ये भी बताइए, आपके एरिया में मिल रहा है नहीं मुझे ये भी बताइए, सब कुछ बताइए, ठीक है। मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा वाली बातें बताने वाली हूँ, तो रेडी रहिए और हमारे साथ साथ रहिए, आपका हमारे साथ पूरे पूरे 3 बजे तक आप सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आ रही हूं, सो आप सुन रहे हैं प्रोग्राम और सुनते रहेंगे पूरे पूरे 3 बजे तक। टाइम हो जाता है शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, वापसी जल्दी आप लोगों के पास आते हैं, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइटिश एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाते रहिए, खूबसूरत होते रहिए।

0: सचल की सरमस्त धरती,
1: फातिये मेहरान सिंध की एक और पहचान,
0: GAFM 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन, वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तू ना मेरा हेटर, तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियां, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हाने हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरण में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, ज़ुकाम, दिल जी तकलीफ़, अधु मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, बारन जो देर सा हलन, फालेज, शुगर, दिमागी कमजोरी, खारिश, नासूर, खूनी ऐं बादी बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, बरोज जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकरण। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
3: जो शहर पंहिंजो घर सकरण, ऐं सकरण जो आवाज़
4: GFM 90.8।

0: दीजिए FM 88
1: सिंध की आवाज।
2: Keep

0: तू ना मेरा हेटर, तू तो मेरा फैन।
1: वाइट इंच ब्यूटी क्रीम 5-day ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियां, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा चेहरा। वाइट इंच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट इंच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM 88 नेट पर. हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सगरन मेहरापुर माथिली लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आपके सिद्रा आपके साथ मौजूद है. मेरे साथ कौन कौन है कहाँ कहाँ से आप हमें सुन रहे हैं मुझे बताते जाइए और शामिल प्रोग्राम होते जाइए. और उसके अलावा फेसबुक पर आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं, आप हमें पैनल पर ज्वाइन करते जा रहे हैं. भाई जान आप लोगों की मोहब्बतें हैं. और इसी के साथ साथ आप लोगों का प्रोग्राम है जिसका नाम है व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो. बिल्कुल जनाब, सो व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी जो प्रोडक्ट्स हैं ये दोनों प्रोडक्ट्स आप लोगों के लिए हैं. मुख्तलिफ हैं जाने कि इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है. एक कि ये व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स अलग प्रोडक्ट्स हैं, डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो है ये अलग प्रोडक्ट्स हैं. तो आप लोगों को बताया जा रहा है, मैं सबसे पहले आप लोगों को व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताना चाहूंगी. तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोगों की स्किन के मुताबिक तैयार होने वाले वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि हर तरह के प्रोडक्ट्स हैं. ऐसा नहीं कि आप ये सोच रहे हैं कि असा रही शे लगाईंदा ही हो तो असान चलाए तो आ ही को ना बाबा तां सबनी चलाए कोई ते बहानो ना हलन वारो तव तां जो अक्सर मुजा जे के लिसनर्स इन डाढा बहाने बाजी कंदा इन डाढा ता बहाना बणाई दायो सहाणी तवा के को भी बहानो बणान कोन दींदा सी जो तो तमा चलाए हर तरह जो प्रोडक्ट आए हर तरह जो प्रोडक्ट आए हर तरह जो प्रोडक्ट आए उन सा मुराद ही तवा नाइट क्रीम लगाण वारा मानो ते तवा नाइट क्रीम लगाए बाबा व्हाइट एज वारन जी तवा साबुन लगाईदा ता व्हाइट एज वारन जो साबुन लगायो ता फेस वॉश लगाईदा ता व्हाइट एज वारन जो फेस वॉश लगायो तमा फेयरनेस क्रीम लगाण चायो था डेली बेसिस ते काईडी सुठी फेयरनेस क्रीम तमा वट कोने का तो व्हाइट एज जी लवली क्रीम तमा वट मौजूद आए बाबा छोटा घबरायो. उन खां अलावा अगर तमाजे चेहरे ते दाणा अची विया आहिनि एक नी तमा के परेशान कयो आहे त तमा जे लाइ डॉक्टर पिंपल जो एंटी एक्ने ट्यूब भी मौजूद आहे. ऐं तमा जे लाइ ॿियो लोशन भी आहे जेको तव्हां ज़ाहिर सी ॻाल्हि सियारे में इस्तेमाल कंदा. सियारो जॾहिं अचे त पोइ वठो, ठीकु आहे? हाली तव्हां जेको आहे न सिर्फ़ ॿुधो त ही प्रोडक्ट बि आहे. सो ही सब प्रोडक्ट तव्हांजे खूबसूरती जे लाइ ठाहिया विया आहिनि. तव्हांजी खूबसूरती खे न सिर्फ़ वधाईंदा बल्कि तव्हांजी खूबसूरती जो ख़्यालु बि रखंदा. ज़्यादातर माण्हू ईअं हूंदा आहिनि, खोड़ सारा माण्हू अचे असांखे इहे बि चवंदा आहिनि त भाजी असां लॻायूं त सही प्रोडक्ट पर लॻाइण खां पोइ इहो हिकिड़ो न हुनजे अंदरि हिकिड़ो भो वेहिजी वियो आहे. हे फेयर आहे जेको हुनजो अनलॉक थी चुको आहे. खोड़ सारा अहिड़ा प्रोडक्ट तव्हां लॻाया हूंदा जे लॻाइण खां पोइ न तव्हांजी स्किन ते जेको निखार आयो त उहो त हलियो वियो ऐं पर तव्हांजी स्किन मज़ीद ख़राब थी वई. त खोड़ माण्हू ईअं हूंदा आहिनि जेके चवंदा आहिनि त अगरि असां कोई बि क्रीम लॻाईंदासीं कोई बि प्रोडक्ट लॻाईंदासीं त छा ख़बर असांजी स्किन ख़राब थी वञे. त तव्हांखे इहो ॿुधाई थी हलां त इहो जेको तव्हांजो भो आहे न त इहो भो त सभ खां पहिरियां ख़तमु कयो. तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट जेके भी आहिनि नेचुरल अज़ा सां तैयार कया विया आहिनि. ऑल स्किन टाइप जे लाइ आहिनि. उहे जेके भी प्रोडक्ट तव्हां लॻाया आहिनि पहिरियां जिन तव्हांखे नुक़सान पहुचायो उहे ईअं हूंदा आहिनि त तव्हांजी स्किन टाइप जे हिसाब सां न हूंदा ठहियल या उन्हनि में खोड़ सारा अहिड़ा फार्मूला हूंदा जेके तव्हांजी स्किन खे ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे नुक़सान पहुचाईंदा. हमेशह पंहिंजी स्किन जे लाइ ऑल टाइप जेके प्रोडक्ट्स हुजनि ऑल स्किन टाइप वारा उहे लॻाईंदा कयो. ऐं ॿी हिकिड़ी मज़े जी ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधायां त हमेशह तव्हां इहो ख़्यालु रखंदा की जॾहिं बि तव्हां कोई प्रोडक्ट परचेज़ कयो था त लाइट वेटेड फार्मूलो हुजणु घुरिजे. यानी हुन में नेचुरल चीज़ूं एड थियल हुजनि जीअं फ्रूट्स थींदा आहिनि. ऐं ईअं न त तव्हांखे भई ॿुधाए वञे त अॼुकल्ह फार्मूलनि जो ट्रेंड जेको हले पियो मार्केट में मूं ॾिठो आहे त इहो जेको ट्रेंड आहे न मुंहिंजे ख़्याल में इहो सफ़ा ख़तरनाक ट्रेंड आहे. इन ट्रेंड खे त महिरबानी करे ख़तमु कयोसि. फार्मूलनि खां अवॉइड कंदा कयो. फार्मूला तव्हांजी स्किन ते जेतिरो तेज़ी सां रंग निखारींदा आहिनि ओतिरो तेज़ी सां तव्हांजी स्किन खे जेको आहे न ख़राब बि कंदा अथव. फार्मूलनि खां बचो ऐं बाबा लाइट वेटेड फार्मूला यूज़ कयो. लाइट वेटेड क्रीमनि जो इस्तेमालु कयो ऐं उहे प्रोडक्ट इस्तेमालु कयो जेके नेचुरल अज़ा सां तयारु थियल हुजनि. सो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जेका एवोकाडो मिल्क एलोवेरा सां तयारु कई वई आहे सभु चीज़ूं तव्हांजी स्किन जे लाइ फ़ाइदेमंद आहे. ऐं व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जॾहिं तव्हां इस्तेमालु कंदा त तव्हांजी स्किन फ्रेश थी वेंदी, फेयर थी वेंदी, तव्हांजे चहिरे जी स्किन प्रोटेक्ट रहंदी उन्हनि सभिनी चीज़ुनि खां जेके चीज़ूं तव्हांजी स्किन खे नुक़सान पहुचाईंदियूं आहिनि. सो मर्द मायूं सभु हणी सघनि था. हर स्किन टोन जे लाइ अथव बाबा तव्हां लाज़मी इन व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम खे ट्राए करे ॾिसजो, तव्हांखे मज़ो अची वेंदो. उन खां अलावा अगरि तव्हां साबुण सुठो कोई परचेस करणु चाहियो था त व्हाइट एज ब्यूटी सोप तव्हांजे लाइ मौजूदु आहे. व्हाइट एज ब्यूटी सोप तव्हां लॻाए सघो था जेको तव्हांजी ऑल स्किन टाइप जे लाइ बि नेचुरल अज़ा सां तयारु थियल आहे ऐं यकीनन तव्हांजी स्किन खे सफ़ा वी आई पी बणाए छॾींदो. उन खां अलावा अगरि तव्हां साबुण न लॻाईंदा आहियो, तव्हां फेस वॉश लॻाईंदा आहियो त व्हाइट एज जो फेस वॉश मौजूदु आहे जेको वाइटमिन सी सां तयारु थियल आहे. वाइटमिन सी त तव्हांखे ख़बर आहे तव्हांजी स्किन जे लाइ लाज़मी हूंदी आहे, ज़रूरी हूंदी आहे. तव्हांजी स्किन खे ग्लो ॾींदी आहे, तव्हांजी स्किन खे सोणो बणाईंदी आहे. सो व्हाइट एज जो फेस वॉश बि मौजूदु आहे. इन खां अलावा मां मूव कयां पई जनाब डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जे तरफ़. त डॉक्टर पिंपल जो एंटी एक्नी ट्यूब जेको आहे ही मां उन्हनि माण्हुनि खे सजेस्ट कंदमि जेके माण्हू दाणनि खां जेको आहे न परेशान हूंदा आहिनि. तव्हांजे चहिरे ते खोड़ दाणा निकिरी चुका आहिनि, एक्नी तव्हांखे परेशान कयो आहे.
तो जनाब तव्हां जे लाइ डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ही ट्यूब मौजूद आहे, तव्हांखे आराम सां किथां बि मिली वेंदी, तव्हां बस नालो वठी करे परचेज कयो। डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जेको फुल आयुर्वेदिक फार्मूलो आहे, आयुर्वेदिक फार्मूले जो मतिलब हिन त हिन में सभु नेचुरल चीज़ूं एड कयूं वयूं आहे ऐं डॉक्टर जी अप्रूवल मां तयार थियो आहे, डॉक्टर जी बिल्कुल येस आहे तॾहिं तव्हां ताईं पहुतो आहे। उन खां अलावा अगरि तव्हांजे चहिरे ते एक्नी आहिनि, एक्नी मार्क्स आहिनि, ओपन पोर्ट्स आहिनि या फिर डार्क सर्कल्स आहिनि या फिर तव्हांजे चहिरे ते कोई धक जो निशान आहे, कोई सड़न जो निशान आहे या फिर तव्हांजे चहिरे ते दाणा ईंदा आहिनि मुख़्तलिफ़ टाइप्स जा, त उन्हनि सभिनी चीज़ुनि खे कंट्रोल कयो, उन्हनि सभिनी चीज़ुनि खे ख़तमु कयो ऐं डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जो इस्तेमालु कयो। डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जेको आहे इहो तव्हां अकेले बि इस्तेमालु करे सघो था, पंहिंजे कंहिं प्रोडक्ट में इस्तेमालु बि करे सघो था, उन में एड करे। अगरि तव्हांजी स्किन काफ़ी सेंसिटिव आहे, तव्हां ब्यूटी क्रीम लॻाइणु चाहियो था, नाइट क्रीम, ख़ासि करे जिन माण्हुनि जी शादी थियण वारी हूंदी आहे, त हुननि खे त इहो मतिलबु चयो वेंदो आहे त तव्हां बाबा प्रोडक्ट खणो, तव्हांजी स्किन गोरी ॾेखारिजे, ऐं हू इन जेको आहे न प्रेशर में अची करे अहिड़ा प्रोडक्ट इस्तेमालु कंदा आहिनि जेके तव्हांजी स्किन खे ख़राबु बणाए छॾींदा आहिनि। त तव्हां हमेशह पंहिंजी स्किन खे जेको आहे न थोरो फ्री रखंदा कयो ऐं फ्रेश रखंदा कयो, ऐं सभ खां हिकिड़ी ज़रूरी ॻाल्हि त तव्हां पंहिंजे चहिरे खे क्लीन रखंदा कयो, साफ़ सुथरो रखंदा कयो, साफ़ सुथरा रहो तव्हांजी स्किन ते दाणा ही सभु चीज़ूं ख़तम थी वेंदियूं, साफ़ सुथरा रहो। उन खां अलावा जेको आहे न डॉक्टर पिंपल जो एंटी एक्नी ट्यूब दाणनि खे ख़तम करण लाइ इस्तेमालु कयो पिया। उन खां अलावा गर्मी में अगरि तव्हांखे कोई सुठो प्रोडक्ट खपे त तव्हां वाइट एश लवली क्रीम जी तरफ़ अची सघो था। वाइट एश लवली क्रीम जी मां मतिलबु छा तारीफ़ कयां, हीउ त मुंहिंजो पर्सनली फेवरेट प्रोडक्ट आहे। तो वाइट एश लवली क्रीम जेका रेडियंट अल्ट्रा वाइटमिन सां तयार कई वई आहे, हिन जे अंदरि 30 वाइटमिन कैप्सूल मौजूद आहिनि। वाइटमिन डी आहे, वाइटमिन सी आहे, वाइटमिन ई आहे, वाइटमिन B3 आहे, अहिड़ा खोड़ सारा वाइटमिन जेके वाइटमिन सां भरपूर तरीक़े सां तयार कई वई आहे वाइट एश लवली क्रीम। ऐं सिर्फ़ ॻाल्हि हिते ख़तम नथी थिए, हिन जे अंदरि सनस्क्रीन बि एड आहे बब्बा साईं। सो बिल्कुलु तव्हां ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट जेको आहे ही तव्हां इस्तेमालु करे सघो था। मर्द मायूं सभु लॻाईंदा, एज लिमिट बि का कोन्हे का, ॿार बच्चा सभु लॻायो, सभु लॻायो ऐं सुहिणा सुहिणा थी वञो, सुहिणा सुहिणा ॾेखारिजो। वाइट एश लवली क्रीम तव्हां ॾींहं जो लॻायो, राति जो लॻायो, जहिड़े टाइम तव्हांजी दिलि चवे लॻायो। तव्हां काॾे वञो था, का मीटिंग आहे, को फंक्शन आहे, का पार्टी आहे, तव्हांजी ऑफिस आहे, तव्हांजो स्कूल आहे, कुझु बि आहे, तव्हां वञो था काॾे, त तव्हांखे टिप टॉप लॻणो आहे, त तव्हां वाइट एश जी लवली क्रीम पंहिंजे चहिरे ते लॻाए करे पोइ ई वञो बाबा, तव्हां सफ़ाई सोणा सोणा ॾेखारिबा, हर कोई तव्हांजी तारीफ़ कंदो। त हीउ कमाल आहे जॾहिं तव्हां इस्तेमालु कंदा वाइट एश लवली क्रीम। सो ही फेयरनेस क्रीम आहे जेका तव्हां मतिलब कहिड़े टाइम बि लॻाए सघो था। फेयरनेस क्रीम जो मतिलबु हूंदो आहे जेको तव्हां बसि लॻायो ऐं तव्हांखे मेकअप जो इफेक्ट मिली वञे। सो वाइट एश लवली क्रीम लाज़मी तव्हां ट्राए करे ॾिसजो, तव्हां सभिनी जे लाइ भाइर भेनर हर कोई चाचा चाचू मामा मामियूं सभु लॻाईंदा सही आहे। ऐं उन खां अलावा तव्हांजे एरिया में नथो मिले त तव्हां डायल कयो पिया 03-15-799-0595। अच्छा, हीउ नंबर तव्हां लाज़मी डायल कजो जीअं तव्हांजे क़रीबी जनरल स्टोर ते ही प्रोडक्ट्स अवेलेबल थी वञनि सही आहे। ओके, सो नंबर डायल कयो पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल करायो, वञो वञी वठी अचो, सुहिणा सुहिणा थियो बाबा, रीस नथी अचेव, ईअं न कंदा कयो अला। ऐं मां तव्हां खां पुछियो आहे सवाल, तव्हां मूंखे ॿुधायो छा तव्हां पंहिंजो चीज़ूं शेयर कंदा आहियो, पसंदि आहे तव्हांखे पंहिंजी शइ कंहिंखे ॿिए खे ॾियण पसंदि कंदा आहियो, हिन शइ खे ॿुधायो मूंखे जल्दी जल्दी। उन खां अलावा तोसां हर रोज़ मिलण जो मज़ो पंहिंजो आहे।

भी सो आप क्या कह रहे हैं आपके मैसेजेस की जाने बातें. एस एन आर पानी कहते हैं सिद्रा आप तो टॉपिक से अच्छा ठीक है ये कमेंट हो गया था. और ये हिदायतुल्ला कहते हैं कि शेयरिंग पसंद नहीं है इस वजह से आपका शो भी हम शेयर नहीं करते. अरे भाई ये तो किया करे. अरे किशोर भाई आ चुके हैं. हेलो. सुफियान कहते हैं आप कितने शो करती हैं दिन में. सिर्फ ये एक करती हूँ, सिर्फ ये एक 1 बजे से लेकर 3 बजे वाला.

अच्छा दर्दी दिल कहती चंदा तुझे शो में अचण जो मज़ो पंहिंजो आहे हकीकत आहे बाबा जरे ता व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाइना को भी उन्हें जो मजो पाए जो तब तुम लाजमी लगा रहे जो नूरे से तुनियो भाई कहती अदी आप दूसरी लिसनर्स की सारे एसएमएस पढ़ती हैं अच्छा तां जो भी तो पढ़ंदी आ रोज डेली एको एको मैसेज कंदा आयो कमेंट कंदा आ कि डेली पढ़ंदी आ मां मेरी सादगी देख और उन खां अलावा छा चो हेडा सारा कॉमेंट करी छा एक मैसेज कॉपी पेस्ट कर जितरा दफा कहे तो ओतरा दफा तो खैर मां न पढ़ंदम न और उन खां अलावा छा चो अगते अचूं जरा सा वासा भाई तमा के भी मुबारक हुजन बाबा किशोर भाई कहते टॉपिक आप ही तो कहती हैं शेयरिंग इज केयरिंग वो तो पोस्ट के लिए कहती हूँ ना बाकी आप अपना बताएं

अच्छा पोस्ट को लाइक और शेयर करिए जरा, यहाँ कंजूसी नहीं चाहिए मेरे को बिल्कुल, आपने बहुत ज्यादा वाली शेयरिंग देनी है पोस्ट के ऊपर। और वासु भाई कहते हैं कि खामोश रहा हमारी नेकी पे जमाना, खामोश रहा हमारी नेकी पे जमाना, एबों की बात आई तो गूंगे भी बोल पड़े, यही तीन दो तवा बब्बा। अच्छा आदर कहते हैं टॉपिक आंसर में कुछ भी शेयर नहीं करता हूँ, लोग आजकल किसी की बात रखते कहाँ है, हर किसी को जाकर बताते हैं। हाँ यह भी सही गाला। अच्छा चाचा कहते हैं मैं अपनी पसंद अपनी मोहब्बत किसी से भी शेयर नहीं करूंगा। अच्छा या तो वैसे शेयर करने वाली शेयर होंगी भी ना है। किशोर भाई कहते हैं अदी कल के जिक्र कयो त अच्छा रात जो तोखे बारिश वणंदी आ तो चाहे मुखे ये ना है हुंदो इन्हें गाल लाइक टॉपिक लंबो थी वेंदो सो छे बस गाल के जबार वैसर मैसद मौजूद ही वालेकुम अस्सलाम अदा ख्याल तानो खुश आयो काफी दिन का पोई तवा से प्रोग्राम में शामिल थी आयो मोहब्बतों और छाते छो किशोर भाई असा बिरयानी खाइंदा सी खाओ खाओ बाबा बिरयानी खाओ असा ने मुंह करे खाए जो और ये है जी नूरिसन दुनियो भा छाते छो मैं अपनी पर्सनल एक्टिविटीज किसी के साथ भी शेयर नहीं करता और करनी भी नहीं चाहिए। अच्छा संजय जी पाल हमारे साथ मौजूद है, संजय आपको वेलकम हो गया जी। सखावत अली राजपर ही वालेकुम अस्सलाम छा हला तवा जो सखावत मां सफा ठीक है ता बुधायो मुनवर मुलाई जो गानो बुधन आया हो और जमीन राजपर के सलाम और सखावत अली राजपर बसीरो खान तवा सा के ज्वाइन कयो है सो मोहब्बत प्यारे भाजू प्रोग्राम बुधु पया की वारो ट्रैक हलायो तो मुझे सफा घणो फेवरेट गानो आ सो अच्छा तो बुधुंदा

या वाकई मुंहिंजी हिकिड़ी ख़राब आदत आहे इहो चयो वञे थो त अगरि मां पंहिंजी पसंदि जो गानो हलाईंदा त मां हुनखे वरी चुप करे ॿुधंदी आहियां, बाक़ी ॿियनि जी पसंदि जो गानो हलंदा त हुन में बक बक कंदी आहियां. वाकई दिस इज़ नॉट अच्छी बात. अच्छा वाइटामिन्स के भी ए बी सी डी ई होते हैं भाई, वाइटामिन्स में भी ये सारी चीजें, वाइटामिन्स ने भी अच्छे खासे से ए बी सी याद कर लिए. तो अब आप जो है ना वाइटामिन से भरपूर वाले जो प्रोडक्ट्स है ना उनका इस्तेमाल किया करें, वाइटामिन्स लिया करें जिन जिन चीजों के वाइटामिन्स होते हैं, ताकि आप लोग जो है ना वो मुकम्मल रहे सेहत में भी और खूबसूरती में भी.

0: अदा सखावत भाई के दिया साथ हर शही डींदा हूँ मानन के रत भी डिनी सी रहली। अच्छा नदड़ी आ चुकी प्रोग्राम में। हाय मैं भी सुन रही हूँ थोड़ा थोड़ा, आई याद यू। अरे भाई थोड़ा थोड़ा क्यों सुन रही हो, कहाँ हो तुम आजकल, नजर कम आ रही हो मम्मी। और दर्दी दिल कहती चंदा तुम्हारा शो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ओके भक्तली सियाल भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम सुन रहे हैं और साथ साथ आप इस्तेमाल कर रहे हैं जनाब व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स। तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपके एरिया में मिल रहे हैं नहीं, मुझे बताइए कहाँ कहाँ पर अवेलेबल कराने चाहिए ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, आप वहाँ से जाएं और बस परचेज करके आए। तो जल्दी से मुझे बताइए और साथ में डायल कीजिए 03-15-799-0595। अच्छा टाइम हो जाता है जरा हम न्यूज ब्रेक की जानिब जाते हैं, इसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाली है। अब आपसे जल्दी आप लोगों के पास आते, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहिएगा, सुनते रहिए, इंजॉय कीजिए और हमारे साथ दीजिए पूरी पूरी 3 बजे तक। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, keep listening. White Ish and the Skin Beauty Show is sponsored by White Ish Beauty Products and the Skin Beauty Products. Aapki khoobsurti ki zaman
1: तहजीब व सकाफत से सजी सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का सास। GAFM 88 की आवाज,
1: GAFM 88 Network, सिंध की आवाज।
3: अब आप सुनेंगे GAFM Network पर KTN News।
4: सिंध में गुड बैराज से मथा वकड़ो 72,000 क्यूसिक से हेठां वकड़ो 53,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। सखर बैराज जो मथा वकड़ो 53,000 क्यूसिक से हेठां वकड़ो 18,000 क्यूसिक थी वियो। ईरान खिलाफ़ जंग बाबत सदर ट्रंप जा इतार महदूद करण वालों ठहरा, अमेरिकी कांग्रेस में मंजूर, ईरान खिलाफ़ जंगी कार्रवाई कांग्रेस की मंजूरी से मशहूर। अमेरिकी कांग्रेस डेमोक्रेट्स पारा पेशकल ठहरा, 215 वोट्स के भेट में 208 वोट्स तक मंजूर करे वरतो। 4 रिपब्लिकन सेनेटर्स भी ठहरा के हक में वोट दिनों, ठहराव हो ईरान खिलाफ़ कें भी किस्म की जंगी कार्रवाई कांग्रेस की मंजूरी का सवाल न थी सी। अमेरिका हाँ बीहर ईरान खिलाफ जंग शुरू न कह, सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान से बीहर जंग तक हथ थी वो। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट दावा कई है, सदर ट्रंप तकरार जो सफारती हल चाहे तो इनके बधाए नो चाहे, उन पैंजे वेझन सलाहकार के बुधा है ईरान खिलाफ बीहर जंग शुरू न कई वी। असाजी फजी पोजिशन पहरी का मजबूत है, मुस्तहकम है। ईरानी परे वजीर अब्बास सराक्षी चवाए तो जंग दौरान भी तेहरान हथियार की पैदावार बरकरार रखने में कामयाब रहो। ईरान वटि जंग जारी रखने की सलाहियत मौजूद है, इन मकसद यो ना तो ईरान जंग जारी रखना चाहे तो।

जाकड़ी कामयाब इसराइल ए लबनान जंग में ते इतफाक करे तो वाशिंगटन में अमेरिका की मेजबानी हेठ थियल इसराइल ईरान गाल गडल पथनामो जारी पथनामे मूजिब इसराइल लबनान जंग में ते इतफाक करे तो है लबनान इसराइल में भी गाल जून से थन्दूँ अमेरिकी पदई खाते मूजिब हिजबुल्लाह के इसराइल से हमला रोकने से गुड लेतानी वालों इलाको खाली करो पव पायलट जोन्स ठाया वा जिनते

विदेश सूबे वजीर शजील इनाम मुंहिंजी वफ़ाक़ी घर वज़ीर मोहसिन नक़वी सां मुलाक़ात अमरमान सूबे सहकार मंशियात जे खाते मुख़्तलिफ़ मामलनि ते ख़्यालनि जी ॾे वठि कराची समेत मुंहिंजे वॾनि शहरनि में मंशियात जी रोकथाम ऐं अमरमान ते बि ॻाल्हि कई वई शजील इनाम मेमन चयो त वफ़ाक़ सूबनि विच में राब्तो ऐं सहकार क़ौमी चैलेंजेस खे मोड़ण जो ज़रियो आहे क़ौमी मुफ़ाद वारनि मामलनि में समूरनि इदारनि हुकूमतुनि खे गॾिजी कमु करणु घुरिजे सिंध हुकूमत मेट्रिक ऐं इंटर जे नतीजनि जी तारीख़नि जो ऐलान करे छॾियो सूबे में मेट्रिक इम्तिहान जा नतीजा 10 जुलाई ऐं इंटर इम्तिहान जा नतीजा 31 जुलाई ताईं जारी करण जो फ़ैसिलो यूनिवर्सिटी तालीमी बोर्ड वारे वज़ीर जी सदारत हेठि तालीमी बोर्ड जो अहम इजलास इस्माइल राहू चयो त मेट्रिक ऐं इंटर जा नतीजा तय थियल तारीख़ ते जारी कया वञनि लाड़काणो डिवीजन जे मुख़्तलिफ़ ज़िलनि जी बिजली 3 ॾींहं गुज़रण बावजूद बहाल न थी सखर लाड़काणो कश्मोर खड़गपुर शिकारपुर जेकोबाद शरादपुर भानसैदाबाद दादर ऐं ॿियनि शहरनि जी बिजली बहाल न थी रहवासी परेशान सखर शहर जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में 3 ॾींहनि खां बिजली बंदि हुअण सबबि पीअण जे पाणी जो बहरान रहवासी सख़्तु परेशान थी विया ॿार बोतलूं खणी पाणी भरण ते मजबूर 3 ॾींहं पहिरीं तूफ़ान तस्दीक न थी

जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में एपका जे सरहदी सरकारी मुलाज़िमनि जो एहतजाज, पघारनि जे हिसाब सां पघारूं वधाइण जा मसइला हल करण जो मुतालबो। सखर, नौशहरो फिरोज, नवाबशाह, सांगर, शिकारपुर, सजावल ऐं बदीन में एपका जे सरहदी एहतजाज। अॻवान चयो त हुकूमत मुलाज़िमनि जा जाइज़ मसइला हल न कया त तहरीक हलाई वेंदी। मंशियात केस में गिरफ़्तार कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकीअ जे सहूलतकारनि केस मां नाला ख़ारिज कराइण जे लाइ अदालत में दरख़्वास्त दाख़िल कराए छॾी। अदालत सुहेल रहमान ऐं दिशार रहमान जा नाला ख़ारिज करण वारी दरख़्वास्त ते पुलिस खे नोटिस जारी करे छॾिया। हिकु ॿिए केस में अदालत मंशियात केस में गिरफ़्तार शीरीन ऐं संदसि ॿिनि पुटनि जी रिमांड वारी दरख़्वास्त रद्द करे छॾी। अदालत टिनी ॼणनि खे जेल मोकिलींदे ईंदड़ ॿुधरीअ ते चालान तलब करे वरितो।

दादू शहर जे बुनियादी मसलनि जे हल जे लाइ सिविल सोसाइटी जे सॾु ते शहरनि जे मासूम ॿारनि समेत बुखरताल शहर मां लोड शेडिंग ख़तम करण ऐं बुनियादी मसला हल करण जो मुतालबो। अॻवाणनि चयो त सख़्त गर्मी दौरान 18-18 कलाक बिजली बंदि रखी वञे थी, ॿिया मसला बि वधी विया आहिनि, लोड शेडिंग ख़तम करे शहर जा मसला हल कया वञनि।

हैदराबाद के गोठ मोहम्मद बख्सरो भर पास जो गुजरियल 8 दिन का पानी बंद पीने जो पानी न पहुंचने से रहवासी सख्त परेशान गोठान मूजिब तरक्याती कम दौरान गोठ के पानी फराहम कर पाइपलाइन टुटी पी हुई जैसे बाद पानी सप्लाई बंद थी है लाइन की मरम्मत कराई पानी फराहम किया वे

0: फैजगंज ठहरी मीरवा तलकन समेत खैरपुर जिले में दहशत की अलामत बने धारिल शमशाद उर्फ संदिल हिजबानी अदालत में पेश थी गिरफ्तारी दे छी। धारिल शमशाद उर्फ संदिल हिजबानी थरी अदालत में पेश थी गिरफ्तारी डी खेस पुलिस हवाले कर शमशाद उर्फ संदिल हिजबानी से वी का मुकाबलन ए धारन जहा केसिस दाखिल थे। मटियारी के सेखाटवार इलाके में रोड हादसों गोरहारी औरत फौज रस मुड़स मरणी औरत कस्बानों खास किले जो मर जख्मी अस्पताल मुंतकिल ठहरी मीरवा भरसा बहरान हाईवे से भी रोड हादसों एक जो फौत टे जणा जख्मी मोदी जो मर जख्मी के अस्पताल मुंतकिल कर उमरकोट में जीप ए रिक्शा में टक्कर एक जो फौत थानो बुला खान वेझो नूरियाबाद थाने जद में मोटरवे थे अणजात शख्स गाड़ी के टक्कर में फौत थी वो संदस मर अस्पताल मुंतकिल। फैजगंज भरसा फैलाह के लगल घारो वधी 80 फुट थी वो आरी 48 वटा बाह के लगल घारे जो पानी फसल बोड़ने बाद गोठन में दाखिल इतला बावजूद आबाशी अमलदार न पहुंचा इलाके वासन पारा घारो बंद करने की कोशिश जारी गोठान जो चवण है तो बंद कमजोर होने सबब बाह के घारो लगो है।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News।
2: हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिल जी तकलीफ़ अध मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन फालेज शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी बादी बवासीर इन्हन सबनिन बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोजानो सुबह 9 वगे का शाम 6 वगे ताई बरोज जुम्मो 12 वगे ताई एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर मशोरे रबते के लिए 0327 99।

लहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

धमकी आए समझ हां थोड़ी गाल जका ना थोड़ी बाहर आए और चाचा खाले तुम्हारे साथ ही चाचा बिल्कुल तमाचो गानो मौजूदा तमा लाजमी बुदना पर थोड़ो सबर कयो और इरम कहती है ओ मेरी प्यारी दिलबर दोस्त जवाब मैं नहीं करती हूं बाकी अरीबा अपनी चीजें शेयर करती है अच्छा

अच्छा ये वैसे ना सारी अम्मियों का प्रॉब्लम है कि उनको ये लगता है कि उनकी बेटियां तो कुछ करती नहीं है. खैर ये मतलब सारी दुनिया के जो बेटियों का ये मसला है, तो आप ऐसे ना उसे दिल पर मत लिया करें. बस अच्छी बात है, अम्मी की जो ताने ही ना उनको बस आप अपना आशीर्वाद समझा करें और खुश रहें जी. अरिबा कहती है आप ही हो आप ही मेरी दिल भर दोस्त भाभी इरम जी. माशाल्लाह मुबारक हो आपको, सब घर वालों को मुबारक हो और जी बिल्कुल खुश रहें. अच्छा मायरा सारे प्रोग्राम बुधे पई मायरा तव्हांजो मोहब्बत हुआ बाबा प्रोग्राम बुधो पया. अच्छा कश्यप भी असां सां गॾु मौजूद आहे. कश्यप तव्हांजो मैं मोहब्बत हूं प्रोग्राम बुधो पया. ओके जी पोस्ट खे लाइक शेयर कंदा हलो बाबा. कंजूसी छो कंदा आहियो भलाई ते, कहिड़ो तव्हांजा पैसा लॻनि था.

ओगली शो नहीं, बिल्कुल आज आपकी जो पसंद है ना वो भी लगाई जाएगी प्रोग्राम में। तो बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ। और बताइए जरा, डी स्किन प्योरी क्रीम लेने का इरादा है या नहीं? और नखा अलावा किशोर भाई कहते अभी टॉपिक, मुझे टॉवल का अलावा हर चीज घर वाला यूज करना है, बाकी अगर कराची आयो तो केर हाथ लगाए तो आप शायद तो ज्यादा ही गुस्सा कर लेते हैं। चलिए अच्छी बात है, वैसे अपनी चीजें कमी शेयर करवाया करें, और ज्यादातर जब बहुत ज्यादा लोग आपके साथ मौजूद और वो आपकी चीजें इस्तेमाल करें तो फिर ये थोड़ा मसला बन जाता है। और वो इस तरह के जो लोग, यानी कि जो सफाई पसंद लोग होते ना, तो उनको ये चीज पता नहीं क्यों पसंद नहीं आती। मैं तो इस तरह का इंसान हूँ, मैं क्या बताऊँ अपने बारे में, मुझे ना कोई भी चीज शेयर करना पसंद नहीं।

तो बस आप भी थोड़ा सा ख्याल रखा करें, टॉवल हो या फिर साबुन हो या फिर इस तरह के जो प्रोडक्ट्स जो कि आप लगा रहे होते हैं, तो वो प्रोडक्ट जो ना वो शेयर करना, थोड़ा सा आप अपना जो ना वो प्राइवेट रखा करें वो चीजें आप लोगों की। और हर तरह के लोग जो है ना वो अगर उनका इस्तेमाल करते हैं तो इससे जो ना हर तरह के जरासीम आपके प्रोडक्ट के अंदर आ जाते हैं। तो जो आपकी स्किन है उसे आप वो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो जो कि सिर्फ आप इस्तेमाल कर रहे हो, और उससे जो है ना सारे लोगों को बोलेंगे भाई अपनी अपनी जाके प्रोडक्ट ले लें, हमारे क्यों लगाते हैं। तो कुछ चीजें वाकई ऐसी होती हैं जो आप शेयर ना ही करें तो बेहतर है। अच्छा मौलाई मुजाहिद बोजार हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम, तो वहां की जो था भली करी आया लाहौती साजन चांडियो भी ऐसा सगड मौजूद आए प्रोग्राम बुधे पयो तो मोहब्बत बिनिन भावन जो दर्द दिल कहती है टॉपिक हम सभी सिस्टर्स आपस में शेयर कर लेते हैं, कपड़े तो बिल्कुल नहीं बाकी सारी चीजें शेयर कर लेते हैं। मुझे लगा कपड़े शेयर करती होंगी, वो कुछ बेहतर था। उस ऑप्शन की तरफ आप जा सकती हैं, वेल अच्छी बात है, शेयरिंग इज कैरिंग होती है। और एसन क्या कहते हैं, चले एसन तो आप जो गानों एंजॉय करो करण ध्यान तो पूरा

हे वाह जो गानो आ ए गानो तमा एंजॉय कयो पया प्रोग्राम आ हे बिल्कुल जी प्रोग्राम सुन रहे व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपकी हमारी जो बातें हैं वो चलती रहेंगी पूरी पूरी दिन बजे तक आपका हमारा साथ रहने वाला है मेरी जान तो साथ रहिएगा और सुनते रहिए एंजॉय कीजिए और जरा डायल करते रहिए 03-15-799-0595 मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आ रही हूँ तो आप यही बैठे रहिए मैं जल्दी वापस आती हूँ।

0: यू तो है मशहूर मासूम शाह का मीनार,
1: सखर की खजूर,
0: सिंध का बढ़ाती है मान,
1: सखर बैराज की शान,
0: और अब आवाज की सूरत बनी है
1: सखर की एक नई पहचान।
0: जीए सखर FM 88,
1: सखर की आवाज।
0: जीए FM 88,
1: सिंध की आवाज। खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ मिंडीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: और संगे मील उबूर इफ्तिताह शाराए भुट्टो, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, न सिर्फ उसी अवामी फलसफे के अमीन है बल्कि उसी अवामी सोच की तकमील में मसरूफ अमल है। अनथक मेहनत का शाहकार, तकरीबन 39 किलोमीटर तवील, 6 रोया, जदीद और सिग्नल फ्री शाराए भुट्टो कराची के मुख्तलिफ इलाकों को M9 मोटरवे से जोड़ते हुए सफर को तेज, महफूज और आसान बनाएगा। जदीद इंटरचेंजेस, तेज रफ्तार सफरी सहूलत, वक्त और ईंधन की बचत और कराची की तरक्की का नया दरवाजा शाहराए भुट्टो, एक जदीद और रोशन सिंध की अलामत। तरक्की का सफर, आवाम का फखर, हुकूमत सिंध।
1: ब्यूटी को बनाओ परफेक्ट ब्यूटी बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के साथ, जो दे आपको खूबसूरती का हकीकी एहसास। चेहरे के दाग धब्बे, खेल महासे और बेजान पन, अब सबको कहें अलविदा बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम। चेहरे की जिल्द को दे नया निखार, नरमी, ताजगी और कुदरती चमक। सावली रंगत अब नहीं, सिर्फ 3 दिन में पाए साफ, निखरी और गोरी रंगत। लेकिन याद रखें, बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से पहले बेस्ट लुक ब्यूटी सोप जरूर इस्तेमाल करें, ताकि खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ मिंडीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूर मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, जुकाम, दिल जी तकलीफ़, अधु मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, बारन जो देर सा हलन, फालेज, शुगर, दिमागी कमजोरी, खारिश, नासूर, खूनी ऐं बादी बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, बरोज जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
1: जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: यूं तो है मशहूर मासूम शाह का मीनार,
1: सखर की खजूर,
0: सिंध का बढ़ाती है मान,
1: सखर बैराज की शान,
0: और अब आवाज की सूरत बनी है
1: सखर की एक नई पहचान।
0: जीए सखर FM 88
1: सखर की आवाज़।

सुनो जाना अगर मैं मुसव्विर होती तो उतारती तुम्हारी तस्वीर को किसी सफेद कैनवस पर या फिर किसी कागज पर. तुम्हारी खूबसूरत आंखें और वो मुस्कुराहट मेरे बस में अगर होता तो भरती रंग तुम्हारी तस्वीर में या फिर तुम्हारी जिंदगी में. हाँ, तुम्हारी जिंदगी में ही. और अगर मैं कुछ खत्म कर सकती तो वो तुम्हारे दुख होते. और अगर किसी एक शे को दायमी लिख सकती तो वो तुम्हारी मुस्कुराहट होती. अगर मैं कोई लेखक होती तो लिखती तुम्हारे बारे में और वो तुम्हारी हंसी. ये जब तुम हंसते हो तो कैसे लगते हो. तुम्हारी मुस्कुराहट कितनी हंसी है. करती बयां तुम्हारे बारे में ये जब तुम उदास होते हो तो कैसा लगता है. हाँ सुनो. ऐसे जैसे कायनात खफा हो मुझसे, जैसे सभी रंग रूठ गए हो मुझसे. अगर मैं तुम्हें लिखती तो मेरी कहानी का अहम किरदार होते, वो जिसके बल पर कहानी हसीन होती है. मैं लिखती तुम्हें या उतारती तुम्हारी तस्वीर को एक कैनवस पर. अगर जो मैं लेखक या फिर मुसव्विर होती अगर मैं लेखक या फिर मुसव्विर होती तो उतारती तुम्हारी तस्वीर को

pare, Dia de la Nadanie. ऐसे काम तो होते ही नादानी में है ना. समझदार भला कब मोहब्बत.

ओके जी, वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो. स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से. हाँ, गड़बड़ करूँ और ये मैं ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता. ओके जी, तो हम जरा आप लोगों को बताते हैं व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में. तो जब आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, इन दोनों प्रोडक्ट्स का आप लोगों ने ना जो है ना वो इस्तेमाल करना है. इस्तेमाल यूं करना है कि आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए इन तमाम चीजों के बारे में कि ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये आप लोगों की ऑल स्किन टाइप के लिए हैं. और मजे की बात कि ये सारे प्रोडक्ट जो हैं ये नेचुरल अज़ा से तैयार किए गए हैं. और व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए हर तरह के प्रोडक्ट्स मौजूद हैं. डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप लगाना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन फेस वॉश भी मिल रहा है. तो इस्तेमाल करते जाइए, खूबसूरत होते जाइए और डायल करते जाइए 03 15 799 0595.

ओके जी, बहुत ही प्यारा गाना यहाँ पर आप इंजॉय कर रहे हैं और साथ साथ एक और गाना हमारी लिस्ट में मौजूद है, तो मैं जरा सोच रही हूँ कि गाने लगा दे जाए साथ साथ, ताकि आप लोग अपनी पसंद के गाने जो है वो इंजॉय करते रहे। एक बहुत ही प्यारा गाना हमने लगाया है जेनिफर की आवाज में, इंजॉय करेंगे। इमरान अली बिरोही कहते हैं, बाजी टॉपिक का जवाब है, नहीं हम किसी को शेयर नहीं करते, अगर आप बोले तो फिर सोचा जा सकता है। अरे भाई, मेरी इतनी बातें मत माना करें, वही बातें माना करें जो सही हो। और बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।

लाई मुजाहिद बुजार के लिए टॉपिक. मैंने एक दफा पापा के पर्स से 2000 निकाले थे. छोटे भाई को बताया था, भाई ने उसी वक्त ही पापा को बता दिया और मेरी अच्छी खासी पिटाई हुई थी. इसलिए कोई बात किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए. वैसा ये तो बात सही है, मुफ्त में ही आपको पिटाई पड़ गई. लेकिन मुफ्त में तो नहीं थी ना, आपने चोरी करी थी. वो भी अच्छी बात नहीं थी. चले, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद है. और ये हमारे साथ है जी मुहर्रम अली गोड़ाहो भाई गोठ. अच्छा, नौशरो फेरो से, ठीक है जी. मुहर्रम अली गोड़ाहो भाई और महनूर आपके साथ मौजूद है. दोनों को वेलकम एंड खुशामदी. निदा कहती है मैं तो तुम्हें भी शेयर ना करूं, मैं कोई शेयरिंग वाली चीज हूं, मुझे तो मत ही करो. और हिदायतुल्लाह क्या कहते हैं? चलें जी, अच्छी बात. ओके जी, सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए और खूबसूरत हो जाइए, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों की स्किन के मुताबिक है जनाब. जिसके अंदर विटामिन ई बीड्स हैं, माइक्रो बीड्स हैं जनाब. आप ट्राई कीजिए, आपको मजे आ जाएगा. जी जी, जेनिफर लोप्स. चाचा अभी सुनती क्या इनको? किशोर भाई कहते हैं यहाँ चीजों की बात हो रही है. माय सिस्टर इज नो चीज. यस, यही तो बात बता रही थी मैं, समझाना चाह रही थी.

और ये है हमारे साथ सुफियान, कहते हैं सही बोला आपने, मैं बोलती सही हूँ, पता नहीं कौन सी बात आपको अच्छी लग गई मेरी। दादला मैं कंजूस नहीं हूँ, बस थोड़ा सा वो हूँ जो अपनी चीजों से प्यार करता है, और सोचती मैं अपनी चीजों से इतना प्यार करती हूँ, तो जिन लोगों से मैं प्यार करूंगी उनसे कितना प्यार करती होंगी।

कहोगे नहीं, बहुत प्यारा गाना हमने सुना एक और मैडम नूरजहां की आवाज में गाना होने वाला है जो कि हमारी लिस्ट में मौजूद है, ये गाना भी हम सुनेंगे और इसको थोड़ा सा आगे करेंगे और थोड़ा आगे करेंगे।

बिल्कुल सुना प्रोग्राम व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाते जाइए खूबसूरत होती जाए अच्छा निदा कहती है कि मेरा खौफ है भाई मेरी कोई भी चीज कोई नहीं उठाता ना बच्चे ना बड़े हल्लुड़े खतरनाक छोकरी अनवर भाई कहते सलाम वाईफाई पे नेट नहीं चल रहा प्रोग्राम को मिस कर रहा हूँ और फिर भी कमेंट कर रहा हूँ आपके यहाँ पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा ईदी गदीर आपको बहुत मुबारक आपको भी मेरे भाई बहुत मुबारक हो और बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों के लिए हाँ भाई कल जुम्मा है कल जुम्मा इतना जल्दी जुम्मा आ गया मेरे को लग रहा है दो दिन बीच में से स्किप हो गए मैं कल ही सोच रही थी कि शायद मंडे है लेकिन नहीं वो वेंसडे था दो दिन बीच में हफ्ते के स्किप हो गए मुझे ऐसा लग रहा है लेकिन कल जुम्मा है इतना जल्दी क्यों गुजरा है वाकई हफ्ता तो अपना ख्याल रखिए और अपने आसपास जितने भी वो लोग जो आपसे प्यार करते हैं आप उनसे प्यार करते हैं उनकी कदर कीजिए ऐसा ना हो कि वक्त तेजी से गुजर रहा है फिर आप हाथ मलते रह जाए और इसके साथ साथ आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी करते रहें ठीक है ना

कैरेक्टर में कुछ ज्यादा ही घुस गए। करना अच्छी बात है, इंतजार कीजिए। और साथ साथ जो है ना अनवर भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ साथ हैं। और अनवर भाई आपने इतने सारे कमेंट्स कर दिए हैं, सही गाला।

राजा किशोर भाई कहते हैं पर अफसोस हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, ये तो बात है। और कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हम इतनी चीजों के पीछे भागते हैं, हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। हम इंसान जो है ना, वो सही बात है, किसी बात में राजी नहीं होते। तो मैं ये सोचती हूँ कि हमें अगर वो सारी चीजें मिल जाए, वो सारी हमारी ख्वाहिशात पूरी हो जाए, तो फिर हम मतलब जो है क्या अपनी जिंदगी में खुश रह सकते हैं। ये कभी सवाल आप खुद से जरा कीजिएगा। ये तो वैसे टॉपिक होना चाहिए प्रोग्राम का, तो ऐसे जरा आप सोचिए। मैं जरूर आपसे इसके ऊपर जो है ना वो आपके पॉइंट ऑफ व्यूज जानना चाहूंगी कि अगर हम जिन चीजों के पीछे भाग रहे हैं, जो चीजें हमें चाहिए आज के दिन, आज की डेट में, और अगर वो चीजें हमें मिल जाए, तो क्या हम बाकी अपनी जिंदगी में खुश हो सकते हैं, खुश रह सकते हैं? ये चीजें वैसे मैं काफी ज्यादा सोचती हूँ और वे सोचनी भी चाहिए, क्योंकि ये चीजें वाकई ऐसी होती हैं कि अगर आप ये चीजें सोचेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जिंदगी में सारी चीजें और सारी जो लोग होते हैं, सारी चीजें जो हम हासिल करना चाहते हैं, वो हासिल करने वाली नहीं होती। कुछ चीजें आप खो दें तो ये बेहतर होता है हमारे लिए, और तभी आप शायद जिंदगी में खुश भी रह सकते हैं। सारी चीजें हासिल करने वाली नहीं होती। और ऐसे ही एक प्यारा गाना हमारी लिस्ट में मौजूद है, इन शहर में एकड़ो माणू हुयो जिसको मुझे दिल जो राणो हुयो, वो शायद कारे घूम दी गयो। प्रोग्राम जो लास्ट स्ट्रिंग थे।

0: ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करती रही और यहाँ पर टाइम हो जाता है, आप लोगों से इजाजत भी लेंगे हम। भाई ये मैं सोचा करेंगे मैं इग्नोर करती हूँ आपको, मेरी सबके ऊपर नजर है। अच्छा हजार खान जदोई भाव, वालेकुम अस्सलाम, वेलकम वेलकम, लास्ट में आया हो, खैर था कितने हुआ।
1: शहर ऐसा क्यों जाए पर जाने मन को ना, पर जाने मन
0: ओके जी सो दर्दी दिल। हाँ जी।

गानो बुधो ई मां वठा थी तवा का इजाजत वरी सला तवा से मुलाकात मुजी थियन वारी आहे सैटरडे ते पांजो ओ हिडो सरो ख्याल रखना ठीक आ के का गलती थी जे को लव जेडो गाले जे को तवा के सुठो न लगो तो न ला माजरत कया थी बाबा आई मीन मेरी चवंदी वेनम तवा के जरूर ते तवा लाजमी व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल करना कयो जे तवा जी खूबसूरती तवा के मिली वने तवा हमेशा खूबसूरत ए सोना सोना रहो सो मुखलानी नाहे बाबू सिन सलामत सा सलामत अल्लाह हाफिज़ बाय बाय लव यू ऑल and take care

वटि जंग जारी रखण जी सलाहियत मौजूद आहे। इन जो मक़सद इहो नाहे त ईरान जंग जारी रखण चाहे थो। ईरानी परे वज़ीर अब्बास राशी चयो आहे त असांजी फ़ौजी पोज़ीशन पहिरीं खां वधीक मज़बूत ऐं मुस्तहकम आहे। जंग दौरान बि तहरान हथियारनि जी पैदावार बरक़रार रखण में कामयाब रहियो।

पाकिस्तान भारत में चनाब दरिया से अपलिंक टनल मनसूबे से खदशा जाहिर कर छाया भारत में चनाब अपलिंक टनल मनसूबो सुल्तास माहदे की संगीन भंजकड़ी करार वरी तर्जमान दायर हुसैन इंदिरा भी चवे चनाब जो पानी के बेदरियाई निजाम में मुंतकिल करने वाली रिथा सुल्तास माहदे की संगीन भंजकड़ी है रिथा भारत के चनाब दरिया के पानी से कंट्रोल ईन्दी जहां कबूलण जोगी ना अड़ा कदम व्याना कन्वेंशन आलमी कानून के भी खिलाफ है भारत पारा पानी के हथियार तौर इस्तेमाल करने वाले कदम जहाँ खतरनाक नतीजा निकली सकता पाकिस्तान पैन आबी हक कौमी मुफाद के तहफ के लिए समूरा घुर्बल कदम खड़ने जो हक रखे तो सिंध में दरई पानी जो बहरान संगीन थी वो सूबे में पानी की खोट 45 सैकड़ों तक पहुंची वही सिंध के 58,000 क्यूसिक्स पानी घट मिलने लगो सिंध के 1,30,000 क्यूसिक्स वाली घुर्ज बदला रुगो 72,000 क्यूसिक्स पानी मिलने लगो है सिंध में पानी के संगीन बहरान बावजूद पंजाब पारा लिंक कैनाल जरिए पानी की गैरकानूनी खड़त जारी है पंजाब तौसा पंजनद लिंक कैनाल जरिए गैरकानूनी तौर 12,200 क्यूसिक्स पानी खड़ने लगो ग्रेटर थल कैनाल जरिए 3,000 क्यूसिक्स पानी की खड़त जारी चश्मा जहलम लिंक कैनाल जरिए भी पंजाब 12,800 क्यूसिक्स पानी गैरकानूनी तौर खड़ने लगो सिंध में गुडू बराज के मथा 72,000 क्यूसिक्स हेठा 53,000 क्यूसिक्स रिकॉर्ड सखर बराज के मथा 53,000 क्यूसिक्स हेठा 18,000 क्यूसिक्स कोटली बराज के मथा 12,700 क्यूसिक्स डॉसी में पानी छोड़ बंद पंजाब पारा ब्लड कैनाल जरिए पानी की खड़त सबब सिंध में पानी बहरान संगीन थी वो

0: जे इम्तिहान जा नतीजे की तारीख जो ऐलान कर छो। सूबे में मैट्रिक जा नतीजा 10 जुलाई, इंटर इम्तिहान जा नतीजा 31 जुलाई ताईं जारी करण जो फैसलो। यूनिवर्सिटी ऐं तालीमी बोर्ड वारे वज़ीर जी सदारत हेठि तालीमी बोर्ड जो अहम इजलास इस्तेमालु चयो त मैट्रिक ऐं इंटर जे इम्तिहान जा नतीजा तय थियल तारीख़नि ते जारी कया वञनि। लाकाणो डिवीजन जे मुख़्तलिफ़ ज़िलनि जी बिजली 3 ॾींहं गुज़रण बावजूदि बहाल न थी। सखर, लाकाणो, कश्मोर, खैरपुर, शिकारपुर, जेकबाबाद, शहदादकोट, बांसैदाबाद, राधन ॿियनि शहरनि जी बिजली बहाल न थी। रहवासी परेशान। सखर शहर जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में 3 ॾींहनि खां बिजली बंदि हुअण सबबि पीअण जे पाणी जो बहरान। रहवासी सख़्तु परेशान थी विया। ॿार बोतलूं खणी पाणी भरण ते मजबूर। 3 ॾींहं पहिरीं तूफ़ान सबबि बिजली जा पोल किरण जे नतीजे में बिजली बंदि थी हुई। उमीद सर पंहिंजी ज़ाल ऐं भाउ खे कार इल्ज़ाम हेठि क़तलु कयो। मुतुला पठाणी शहर ऐं संदसि ॾेर शहबाज़ जा लाश इस्पताल मुंतकिल। जवाबदार जे पुलिस सां गिरफ़्तार थियण जा इतला तसदीक न थी। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में एपका जे सर ते सरकारी मुलाज़िमनि जो एहतजाज। पघारुनि जे हिसाब महांगाई जे हिसाब सां पघारूं वधाइण ऐं ॿिया मसाला हल करण जो मुतालबो। सखर, नौशहरो फेरोज, नवाबशाह, सांघ, शिकारपुर, सिजावल ऐं बदीन में एपका जे सर ते एहतजाज। अॻवाननि चयो त हुकूमत मुलाज़िमनि जा जाइज़ मसाला हल न कया त तहरीक हलाई वेंदी। मंशियात केस में गिरफ़्तार कोकेन कोइन अनमोल उर्फ पिनके जे सहूलतकारनि केस मां नाला ख़ारिज कराइण जे लाइ अदालत में दरख़्वास्त दाख़िल कराए छॾी। अदालत सुहेल रहमान ऐं ईशान रहमान जा नाला ख़ारिज करण वारी दरख़्वास्त ते पुलिस खे नोटिस जारी करे छॾिया। हिक ॿिए केस में अदालत मंशियात केस में गिरफ़्तार शीरीन ऐं संदसि ॿिनि पुटनि जे रिमांड वारी दरख़्वास्त रद्द करे छॾी। अदालत टिनी ॼणनि खे जेल मोकिलींदे ईंदड़ ॿुधणी ते चालान तलब करे वरितो। मंज़ूराबाद वेझो कोयले जी खाण में कम कंदड़ पोहरत दॿिजी फौज। संजराणी कोयला कंपनी जी खाण में खुटाई दौरान भिक किरी पई। भिक किरण सबबि स्वातवासी पोहरत दॿिजी फौज थी वियो। मकानी पोहरतनि पंहिंजी मदद पाण तहत पोहरत जो मढ़ खाण मां ॿाहिरि कढी इस्पताल में दख़ल कयो। चारूशाह खां दिल्ली पहुता ऐं मिठियाणी तरफ़ ईंदड़ मर्कज़ी रोड जी हालत ख़राब। 4 साल गुज़रण बावजूदि रोड जो कमु मुकमल न थियो। हादसा रोज़ जो मामूल बणिजी विया। रहवासियुनि जो निकिरण उस में धरणो। मुजाहिरनि चयो त 4 साल थी विया आहिनि, रोड जो कमु मुकमल नाहे थियो। रोड ते खॾनि सबबि हादसनि में केतिरा ई माण्हू फौत थी चुका आहिनि। रोड ठहिरायो वञे। दादू शहर जे बुनियादी मसइलनि जे हल जे लाइ सिविल सोसाइटी जे सॾ ते शहरनि जी मासूम ॿारनि समेत भुख हड़ताल। शहर मां लोड शेडिंग ख़तमु करण ऐं बुनियादी मसइला हल करण जो मुतालबो। अॻवाननि चयो त सख़्तु गर्मीअ दौरान 18 कलाक बिजली बंदि रखी वञे थी। ॿिया मसइला बि वधी विया आहिनि। लोड शेडिंग ख़तमु करे शहर जा मसइला हल कया वञनि। मिटी में एसटीपी जो सूबे में मंशियात जे ख़ात्मे ऐं बदमनी ते ज़ाब्ते जे लाइ एहतजाज। एसटीपी कारकुननि ऐं अॻवाननि डीबलो रोड खां प्रेस क्लब ताईं एहतजाजी रैली कढी। अॻवाननि चयो त सिंध जी तालीम तबाह आहे, इस्पतालुनि में डॉक्टर्स न आहिनि। सूबे जा बुनियादी मसइला हल कया वञनि। मचहरी में पाणी जी खोट ऐं महांगाई ख़िलाफ़ सिंध आबादगार इतिहाद जो मुज़ाहिरो। भाण ऐं डीज़ल जूं क़ीमतूं घटाए पाणी फराहम करण जो मुतालबो। आबादगारनि चयो त भाण ऐं डीज़ल महांगो थियण बाद फसलनि ते ख़र्चु वधी वियो आहे। हुकूमत पाणी फराहम करे ज़रई जिन्सनि जा मुनासिब अघु मुक़ररु करे। हैदराबाद ॻोठ मोहम्मद शोरो ऐं भर पासे जो गुज़िरियल 6 ॾींहनि खां पाणी बंदि आहे। पीअण जो पाणी न पहुचण ते रहवासी सख़्तु परेशान। ॻोठाणनि मूजिबि तरक़ियाती कम दौरान ॻोठ खे पाणी फराहम कंदड़ पाइपनि टुटी पई हुई, जंहिं बाद पाणी सप्लाई बंदि थी आहे। लाइन जी मरम्मत कराए पाणी फराहम कयो वञे। फैज़गंज ऐं ठरी बीवा तालुकनि समेत खैरपुर ज़िले में दहशती अलामत बणियल धाड़ेल शमशाद उर्फ संदीलो हिसवाणी अदालत में पेशी गिरफ़्तारी ॾेई छॾी। धाड़ेल शमशाद उर्फ संदीलो हिसवाणी ठरी जी अदालत में पेशी गिरफ़्तारी ॾिनी। किस पुलिस हवाले कयो वियो। शमशाद उर्फ संदीलो हिसवाणी ते 20 खां वधीक मुक़ाबलनि ऐं धाड़नि जा केसिस दाख़िल थियल। मजारी जे सेखाड़ वारे इलाइक़े में रोड हादसो। गोरहारी औरत फौत, संदसि मुस मरणी। औरत कज़बानो ख़ासि किली जो मण ऐं ज़ख़्मी इस्पताल मुंतक़िल। ठरी बीवा भरिसां बहिराणा हाईवे ते बि रोड हादसो। हिकु ॼणो फौत, 3 ॼणा ज़ख़्मी। पोती जो मण ऐं ज़ख़्मी खे इस्पताल मुंतक़िल कयो वियो। उमरकोट में जीप ऐं रिक्शा में टकर थी पियो। हिकु ॼणो फौत। थाणो बुला खान वेझो नूरियाबाद थाणे जे हद में मोटरवे ते अणॼातल शख़्स गाॾी जे टकर में फौत थी वियो। संदसि मण इस्पताल मुंतक़िल। आहे। फैज़गंज भरिसां फैज़बाह खे लॻल घारो वधी 80 फुट थी वियो। आरडी 48 वटां वाह खे लॻल घारे जो पाणी फसल बोड़न बाद ॻोठनि में दाख़िल। इतला बावजूद आपाशी अमलदार न पहुता। इलाइक़े वासियुनि पारां घारो बंदि करण जूं कोशिशूं जारी। ॻोठाणनि जो चवणु आहे त बंदि कमज़ोर हुअण सबबि वाह खे घारो लॻो आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: It's 3:15 PM.
3: This time check is brought to you by White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
4: अंगेज़ जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरण में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, ज़ुकाम, दिल जी तकलीफ़, अधु मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलणु, फालिज, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी ऐं बादी बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, बरोज जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
5: अजरक के रंगों से रंगी,
6: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
5: सिंध के दिल से निकली आवाज,
6: GFM 88 नेटवर्क।

देखिए ड्रामा सीरियल एक भूल रोजाना रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर। हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियां, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हाँ हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पैंजो चेकअप करायो आय होम्योपैथिक तरीका इलाज सा शिफा हासिल करियो। जी हाँ, हाने अवाजे पैंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूर मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी सोज पुरानी खंग जुकाम दिल जी तकलीफ अध मथे जो सूर अखियुनि जी खारिश जोड़न जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन फालेज शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी बादी बवासीर इन्हन सभी बीमारियों को कामयाब इलाज किया है होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोजानो सुबह 9 बजे का शाम 6 बजे तक बरोज जुम्मो 12 बजे तक। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर वधिक मशवरे रबते 0327-9984-7063।
3: आप सुन रहे हैं
4: DAFM
3: DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज
2: GFM 88
1: नेटवर्क
3: सिंध की आवाज़।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: रखण की तजवीज जामीर भाषा डैम के लिए जमीन हासिल करने लाए 7 अरब रखने की तजवीज। इंदर बजट में मेहमद डैम के लिए 39 अरब रुपया रखने की तजवीज शामिल। वार्षिक हाइड्रो पावर स्टेशन के मरम्मत से 4 अरब 28 करोड़ रुपया खर्च थन्दा। नए माली साल के बजट में कराची ग्रेटर वाटर सप्लाई के लिए 13 अरब रखने की तजवीज शामिल। सिंधु दरिया से टेलीमेट्री सिस्टम लगाने के लिए 5 अरब 76 करोड़ रखने की तजवीज। बंगला डैम के वाधावारे मनसूबे के लिए 4 अरब 59 करोड़ रखने की तजवीज। तरबेला के पंजी वाधावारे मनसूबे के लिए 3 अरब 40 करोड़ रुपया रखने की तजवीज। दासू मनसूबे के कुल खर्च जो काथो 1737 अरब रुपयों का वधिक है। दयामी भाषा डैम जो काथो 479 और पावर हाउस की लागत 174 अरब रुपया है। मेहमद डैम की लागत जो शुरुआती काथो 309 अरब रुपया है। 41 जारी मनसूबे से कम तेज कर वो। 42 रुखियाँ वन पानी मनसूबन के वक्त से तामीर में रंडक बनल।

वजीर आजम शहबाज शरीफ कौमी इक़्तिसादी काउंसिल जो इजलास 8 जून ते सॾायो वज़ीर आज़म जी सदारत हेठि थींदड़ इजलास में चइनी सूबनि जा वॾा वज़ीर आज़ाद कश्मीर जो वज़ीर आज़म ऐं गिलगित बल्तिस्तान जो वॾो वज़ीर शरीक थींदो। नए माली साल जी बजट तजवीज़ ते गौर कयो वेंदो। वफ़ाक़ी हुकूमत पारां नए माली साल जी बजट 10 जून ते क़ौमी असेंबली में पेश कई वेंदी। बजट ते पीपल्स पार्टी जा ख़दशा ख़तम करण जे लाइ नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, सदर आसिफ ज़रदारी ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारी सां मुलाक़ातूं कंदो।

अमेरिका ईरान में नयूं झड़पूं तकरार जे परमन हल में वॾी रंडक करार पाकिस्तान पारां बहरीन ऐं कुवैत ते हमलनि जी बि मज़म्मत परे तर्जुमान ताहिर हुसैन इंदिरा बि चयो आहे त पाकिस्तान जूं खिते में जारी तकरार जे ख़ात्मे वारियूं सफ़ारती कोशिशूं जारी आहिनि अफ़गानिस्तान खां ईंदड़ दहशतगर्द हमलनि असांजे सब्र जो इम्तिहान वरितो हाणे वधीक हमला बर्दाश्त न कया वेंदा इस्लामाबाद काबुल खां पंहिंजी सरज़मीन पाकिस्तान ख़िलाफ़ इस्तेमाल न थियण जी पकी ख़ातिरी चाहे थो अमेरिका हाणे ॿीहर ईरान ख़िलाफ़ जंग शुरू न कंदो सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान सां ॿीहर जंग तां हथ खणी वियो अमेरिकी अख़बार वॉल स्ट्रीट दावा कई आहे त सदर ट्रंप तकरार जो सफ़ारती हल चाहे थो ऐं जंग खे वधाइण नथो चाहे हुन पंहिंजनि वेझनि सलाहकारनि खे ॿुधायो आहे त ईरान ख़िलाफ़ ॿीहर जंग शुरू न कई वेंदी

जंग में शिकस्त बाद दुश्मन ईरान में विरहांगो पैदा करण की कोशिश कर रो है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई चवे तो दुश्मन के ईरान से शिकतान इबरतनाक सदा मिली है। दुश्मन हाँ हाइब्रिड जंग तरफ ध्यान दई रो है। ईरान में मायूसी बदएतमादी पखेड़े रो है। ईरानी परे वजीर अब्बास अराग़ची है तो ईरान वट जंग जारी रखने की सलाहत मौजूद है। फौजी पोजिशन पे का मजबूत मुस्तहकम है। तहरान हथियार की पैदावार बरकरार रखने में कामयाब रहो।

ईरान ख़िलाफ़ जंग मां सदर ट्रंप जा इख़्तियार महदूद करण वारो ठहरा अमेरिकी कांग्रेस मां मंज़ूर। ईरान ख़िलाफ़ जंगी कार्रवाई कांग्रेस जी मंज़ूरी सां मशरूत। अमेरिकी कांग्रेस डेमोक्रेट्स पारां पेश कयल ठहरा 215 वोट सां मंज़ूर कयो। मुखालिफ़त में 208 वोट पिया। 4 रिपब्लिकन सेनेटर्स बि ठहराउ जे हक़ में वोट ॾिनो। ठहराउ मूजिबि ईरान ख़िलाफ़ कंहिं बि क़िस्म जी जंगी कार्रवाई कांग्रेस जी मंज़ूरीअ खां सवाइ न थी सघंदी।

नंबर में एच आई वी ते जाब्तो न आयो। एच आई वी जे शक हेठि वधीक टे ॿार गिम्स में दाख़िल। गिम्स जे एच आई वी वार्ड में दाख़िल मरीज़नि जो अंग वधी नव थी वियो। 10 सालनि जे आमिर, 8 सालनि जी आमना ऐं 7 महीननि जे ताहिर खे एच आई वी जे शकी मरीज़ तौरु गिम्स में दाख़िल कयो वियो। मरीज ॿारनि जा वारिस सख़्त परेशान। गिम्स इंतिज़ामिया ख़िलाफ़ दाहूं। सिहत खाते ख़तरनाक मर्ज़ खे फैलजण खां रोकण जे लाइ जोगा क़दम न खयां। इलाइक़े वासियुनि में ख़ौफ़ पखिड़ियल। गबर जे म्यूनिसिपल चेयरमैन जा एमएनए जावेद शाह जिलानी महरीन भुट्टो ते पैसा घुरण जा इल्ज़ाम। म्यूनिसिपल चेयरमैन अब्दुल लतीफ शेख जी इल्ज़ाम वारी ऑडियो सोशल मीडिया ते वायरल। लतीफ शेख ऑडियो में चई रहियो आहे त तक जो एमएनए जावेद शाह एमएनए महरीन भुट्टो माहवार लखे रुपया रिश्वत ते पेट्रोल घुरी रहिया आहिनि, जेको मां न ॾेई सघियो आहियां। ॿई ॼणा कचा मुलाज़िम बि रखण जे लाइ चई रहिया आहिनि। हिननि खे पैसा ऐं पेट्रोल ॾींदुसि त पोइ गंबट में कमु कीअं कराए सघंदुसि? अब्दुल लतीफ शेख जे इल्ज़ामनि खे एमएनए जावेद शाह जिलानी डॉक्टर महरीन भुट्टो रद्द करे छॾियो। सदन चवण आहे त ख़बर नाहे लतीफ़ शेख कंहिंजी भंगार वेही रहियो आहे। कूड़ा इल्ज़ाम साख मुतासिर करण जी कोशिश आहिनि।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ जुकाम दिल जी तकलीफ़ अध मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलण फालिज शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं बरोज़ जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-760।
2: It's 4:15 PM.
3: This time check is brought to you by D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Dia Jo Show. A product by Biocon International Pakistan.

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

में तजवीज़ शामिल। वारसक हाइड्रो पावर स्टेशन की मरम्मत से 4.28 अरब रुपया खर्च थींदा। नए माली साल के बजट में कराची ग्रेटर वाटर सप्लाई लाए 13 अरब रखने की तजवीज़। सिंधु दरिया से टेली मेट्री सिस्टम लगाने लाए 5.76 अरब रखने की तजवीज़ दिनी वही। मंगला डैम के वाद वे मनसूबे लाए 4.59 अरब रखने की तजवीज़ शामिल। तरबेला की 5 वाद वे मनसूबे लाए 3.40 अरब रुपया रखने की तजवीज़ शामिल। दासू मनसिब की कुल खर्च जो खातो 1737 अरब रुपये का वधिक है। ड्यामीर बादशाह डैम जो खातो 479 पावर हाउस की लागत 174 अरब रुपया है। मोहम्मद डैम की लागत जो शुरुआती खातो 309 अरब रुपया है। 41 जारी मनसूबन से कम तेज किया वो माली डुखाई वन पानी मनसूबन के वक्त सिर तामीर में रंडक बढ़े। वज़ीर आज़म शाहबाज़ शरीफ कौमी इक़्तिसादी काउंसिल जो इजलास 8 जून से सदाए वरतो। वज़ीर आज़म की सदारत हेठ थींदड़ इजलास में चइनि सूबन जा वॾा वज़ीर आज़ाद कश्मीर जो वज़ीर आज़म ए गिलगित बल्तिस्तान जो भी वॾो वज़ीर शरीक थींदो। नए माली साल की बजट तजवीज़न ते गौर कयो वेंदो। वफ़ाकी हुकूमत पारां नए माली साल की बजट 10 जून से कौमी असेंबली में पेश कई वेंदी। बजट ते पीपल्स पार्टी जा खदशा खत्म करण लाइ नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार सदर आसिफ ज़रदारी ए बिलावल भुट्टो ज़रदारी सां मुलाकातूं कंदो। अमेरिका ए ईरान में नयूं झड़पू तकरार के पुरमन हल में वही रंडक करार। पाकिस्तान पारा बहरीन ए कुवैत ते हमलन की भी मज़म्मत। परदेही तर्जुमान ताहिर हुसैन अंदरा भी चयो आहे त पाकिस्तान जो खिते में जारी तकरार जा खात्मे वारियूं कोशिशूं जारी आहिनि। अफगानिस्तान का थींदड़ दहशतगर्द हमलन असांजे सब्र जो इम्तिहान वरतो। हाणे वधीक हमला बर्दाश्त न कया वेंदा। इस्लामाबाद काबुल खां पंहिंजी सरज़मीन पाकिस्तान ख़िलाफ़ इस्तेमाल न थियण जी पकी ख़ातिरी चाहे थो। अमेरिका हाणे ॿीहर ईरान ख़िलाफ़ जंग शुरू न कंदो। सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान सां ॿीहर जंग तां हथ खणी वियो। अमेरिकी अख़बार वॉल स्ट्रीट दावा कई आहे त सदर ट्रंप तकरार जो सफारती हल चाहे थो ऐं जंग खे वधाइण नथो चाहे। हुन पंहिंजनि वेझनि सलाहकारनि खे ॿुधायो आहे त ईरान ख़िलाफ़ ॿीहर जंग शुरू न कई वेंदी।

अमरीकी ट्रैकड़ी कामयाब, इसराइल ए लबनान जंग बंदी से तफा कर वरतो। वॉशिंगटन में अमरीका की मेजबान हेठ थियल इसराइल लबनान गालन जो गडियल पधरनामो जारी। पधरनामे मूजिब इसराइल ए लबनान जंग बंदी से तफा कर वरतो है। लबनान ए इसराइल में बीहर गालू 22 जून से थन्दू। अमरीकी परे खाते मूजिब हिजबुल्लाह के इसराइल से हमला रोकण से गड लेतानी वो इलाको खाली करो पव। पायलट जोन ठाया वा जिन लबनानी फौज को कंट्रोल होंद। पाकिस्तान भारत में चनाब दरिया से अप लिंक टनल मनसूबे से खदशा जाहिर कर छा। भारत में चनाब अप लिंक टनल मनसूबो सिंतास माहे की संगीन भजकड़ी करार। वही तर्जमान चनाब जो पानी कें बे दरियाई निज़ाम में मुंतकिल करण वाली रिथा सिंतास माहे की संगीन भजकड़ी है। रिथा भारत के चनाब दरिया के पानी से कंट्रोल डींदी जहां कबूल जोगी ना है। अड़ा कदम वियाना कन्वेंशन आलमी कानून की भी खिलाफ। भारत पारा पानी के हथियार तौर इस्तेमाल करण वाले कदम जहाँ खतरनाक नतीजा निकली सकन था। पाकिस्तान पंजन आबी हकन कौमी मफादन के तहफुज लाए समूरा घुर्बल कदम खड़न जो हक रखे तो। सिंध में ज़राई पानी जो बहरान संगीन थी वो। सूबे में पानी खोट 45% से पहुंची वही। सिंध के 58,000 क्यूसिक पानी घट मिलन लगो। सिंध के 1,30,000 क्यूसिक वाली घुर्ज बदला रुगो 72,000 क्यूसिक पानी मिलन लगो। सिंध में पानी की संगीन बहरान बावजूद पंजाब पारा लिंक कैनाल जरिए पानी की गैरकानूनी खणत जारी। पंजाब तौर से पंजनंद लिंक कैनाल जरिए गैरकानूनी तौर 12,200 क्यूसिक पानी खड़न लगो। ग्रेटर थल कैनाल जरिए 3,000 क्यूसिक पानी खड़त जारी। चश्मा जहलम लिंक जरिए पंजाब 12,800 क्यूसिक पानी गैरकानूनी तौर खड़न लगो। सिंध में गुडू बैराज के मथाओं वेकरो 72,000 क्यूसिक हेठाओं वेकरो 53,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। सखर बैराज जो मथाओं वेकरो 53,000 क्यूसिक हेठाओं वेकरो 18,000 क्यूसिक थी वो। कोटली बैराज जो मथाओं वेकरो 12,700 क्यूसिक थी वो। जैसे तो डाउन स्ट्रीम में पानी छोड़ बंद। पंजाब पारा फिल्ड कैनाल जरिए पानी खड़ने सबब सिंध में पानी बहरान संगीन थी वो।

0: நாள் ரணசதா டாப்புத்து.
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज.

0: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार, क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट। इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए, इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेक बुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
1: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार, सिर्फ मिंडीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरण में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, ज़ुकाम, दिल जी तकलीफ़, अधु मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, बारन जो देर सा हलन, फालेज, शुगर, दिमागी कमजोरी, खारिश, नासूर, खूनी ए बादी बवासीर, इनन सबनिन बीमारन जो कामयाब इलाज कयो विंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोजानो सुबह 9 AM खां शाम 6 AM ताईं, फरोज जुम्मो 12 AM ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकर। वधिक मशवरे ए राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
3: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत ओ यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार, क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट। इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
1: बहजो शहर, बहजो घर, सकरंट, आए सकरंट जो आवाज,
2: GFM 90.8।

0: सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: गिलगित मां मैंडेट घुर्जे त जीअं इस्लामाबाद वञी चई सघां त को ॿियो सूबो ठाहिण खां पहिरीं गिलगित बल्तिस्तान जो आवाज़ ॿुधणो पवंदो। गिलगित बल्तिस्तान खे मिल्कियत जो हक़ ॾियारण लाइ जियालो वॾो वज़ीर घुर्बल आहे। गिलगित बल्तिस्तान जे इलाइक़े खिज़र में चूंड जलसे खे ख़िताब कंदे पीपी चेयरमैन बिलावल भुटो चयो आहे त गिलगित बल्तिस्तान में पीपुल्स पार्टीअ जी हुकूमत जी वधीक ज़रूरत आहे। ॿियनि पार्टियुनि वटि को बि सियासी नज़रियो नाहे, ज़बरदस्ती अवां ते हुकूमत करणु चाहिनि थियूं। नून लीग हुजे या का बि जमात, ख़बर आहे असांजी कानून साज़ी थियण न ॾींदियूं। फैसलाबाद खे सभ खां सस्ती अघ ते बिजली सिंध ॾींदो आहे। के ई खे सभ खां सस्ती बिजली नूरी आबाद मां मिलंदी आहे। वज़ीर आज़म जी सदारत हेठि एफ बी आर में सुधारनि ऐं मैशत बाबति धारदार इजलास, बरहमदाद में वाद ऐं एफ बी आर में जारी सुधारनि जो जाइज़ो वरितो वियो। सीड़पकारी खे हथी ॾियण लाइ शफ़ाफ़ियत अंटर करार। शहबाज़ शरीफ़ चयो त बरामदाद वारो हदफ़ हासिल करण लाइ मुख़्तलिफ़ शोबनि ते लॻायल टेरिफ़ मरहले वार घटि कयो वेंदो। एफ बी आर में जदीद टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल करे टैक्स उगाड़ी खे बहितर करे सघिजे थो। शफ़ाफ़ टैक्स निज़ाम सां अवाम जो एतमाद वधंदो। वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह जो वर्ल्ड बैंक जे कंट्री डायरेक्टर सां विर्चुअल इजलास, पाणी मनसूबनि ते थींदड़ अगबराई जो जाइज़ो वरितो वियो। के फोर आगमेंटेशन प्रोजेक्ट जो बि जाइज़ो वरितो वियो। मुराद अली शाह जो चवणु हो त सिंध सरकार कराचीअ में पाणी जे मनसूबनि खे बहितर बणाइण लाइ पुरज़म आहे, कम खे बि वक़्त ते मुकमल कयो वेंदो। ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में 12 सालनि खां अवां जी हुकूमत आहे, अवां सूबे लाइ छा कयो आहे? पिशावर हाई कोर्ट जे चीफ जस्टिस जा पीटीआई वज़ीरनि खां सख़्त सवाल। चीफ जस्टिस एस एम अतीक शाह चयो त ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में बदमनी आहे, 6 महीना थी विया आहिनि, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बाबति अदालती फ़ैसिले ते अमल नाहे थियो। अवां खे हिकु ई ॾींहं में 246 केसिस में ज़मानतूं ॾिनियूं। सोहेल आफ़रीदी खां बि हलफ़ न पे वरितो वियो। असां रिलीफ़ ॾिनो। 12 नाला ॿुधायो जिन खे अवां बरतरफ़ कयो हुजे। असां बदिलियूं ऐं बरतरफ़ियूं कयूं आहिनि। प्रोसिक्यूटर 12 सालनि खे हिकु ई ज़िले में मुक़ररु आहिनि। जेकॾहिं अवां असांखे सपोर्ट नथा करे सघो त रस्ते में रंडकूं बि न विझो। कराचीअ में ज़मीननि जो सिस्टम हलाईंदड़ बासर मुख़्तियारकार एजाज़ उल हसन मुअतल। ज़रियुनि मूजिबि एजाज़ उल हसन मेयो खे कराची जी ज़मीननि जी रिकॉर्ड में जालसाज़ी करणु, एंटी करप्शन खे ज़मीननि जा केस इंक्वायरीज़ लाइ मोकिले बाद में उहे एंट्रीज सही करार ॾियण ते मुअतल कयो वियो। एजाज़ उल हसन लैंड यूटिलाइज़ेशन खाते जे मेंबर जो रीडर मुक़ररु थियल आहे। एजाज़ उल हसन कराची जे स्कीम टेरेटरी जो बि मुख़्तियारकार रहियो आहे। खैरपुर में नौजवान जोड़े मुबैना तौर ज़हर पी छॾियो। ज़ाल फौत, मुड़सगती जोगी हालत में अस्पताल मुंतकिल। वाबडा कॉलोनी में घरू अणबणत नौजवान जोड़े खालदा ऐं संदसि मुड़ुस वहीद चांडियो ज़हर पी छॾियो। औरत खालदा फौत थी वियो, संदसि मुड़ुस वहीद चांडियो गणती वारी हालत में अस्पताल मुंतकिल। ऐं नए बुलेटिन में फिलहाल एतिरो ई। थोरो त शॉर्ट ब्रेक, ब्रेक खां पोइ प्रोग्राम ॾिसी सघंदा फैसले जी घड़ी। ॾिसंदा रहो केटीएन न्यूज़।
2: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमाम पखनि जे मुक़ाबले में टे ज़बरदस्त हवा। रॉयल इनवर्टर फैंस, साथ ज़िंदगी भर का।
3: ईद ते सिर्फ़ चांहि नाहे ठहंदी, महफ़िलूं सजंदियूं हिन टपाल मेज़बान। ईद उल अज़हा जो असली मेज़बान
4: सन क्रॉप ग्रुप का डायमंड हाइब्रिड राइस सीड। किसान की उम्मीद, खुशहाली की नवीद।
0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
5: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है। कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क, अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
6: हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ जुकाम दिल जी तकलीफ़ अध मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलणु फालिज शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं बरोज़ जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
7: सिंध के माथे का झूमर
8: DFM 88 नेटवर्क
7: सिंध की आवाज़।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: It's 7:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है. कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं. बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए. इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क, अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी. बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का.
3: अजरक के रंगों से रंगी,
4: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
3: सिंध के दिल से निकली आवाज,
4: GFM 88 नेटवर्क.

0: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है। कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क, अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
1: हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघि, ज़ुकाम, दिल जी तकलीफ़, अधु मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, बारन जो देर सा हलन, फालेज, शुगर, दिमागी कमजोरी, खारिश, नासूर, खूनी ऐं बादी बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, बरोज़ जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस: हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकरन। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
0: तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है। कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसीलिए मेरे पास है बैंकर हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
1: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

गिलगित मां मैंडेट घुर्जे त जीअं इस्लामाबाद वञी चई सघां त को ॿियो सूबो ठाहिण खां पहिरीं गिलगित बल्तिस्तान जो आवाज़ ॿुधणो पवंदो। गिलगित बल्तिस्तान खे मिल्कियत जो हक़ ॾियारण लाइ जियालो वॾो वज़ीर घुर्बल आहे। गिलगित बल्तिस्तान जे इलाइक़े गज़र में चूंड जलसे खे ख़िताब कंदे पीपुल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त गिलगित बल्तिस्तान में पीपुल्स पार्टी जी हुकूमत जी वधीक ज़रूरत आहे। ॿियनि पार्टियुनि वटि को बि सियासी नज़रियो नाहे, ज़बरदस्ती अवां ते हुकूमत करणु चाहिनि थियूं। नून लीग हुजे या का ॿी जमात, ख़बर आहे असांजी कानून साज़ी थियण न ॾींदी। अॼु तरमीम जो सभ खां वधीक फ़ाइदो पंजाब खे थियो आहे। पंजाब जे मफ़ादनि जो ख़्यालु न रखंदड़ गिलगित बल्तिस्तान जो कहिड़ो ख़्यालु रखंदा? पंजाब जा हक़ खाईंदड़ गिलगित बल्तिस्तान जे हक़नि खे विकिरो करे छॾींदा? फैसलाबाद खे सभ खां सस्ती अघ ते बिजली सिंध ॾींदी आहे। आसफा भुट्टो ज़रदारी चयो त बिलावल गिलगित खे पाकिस्तान जो फ़ख्रु समझे थो। बिलावल चाहे थो त गिलगित बल्तिस्तान जे नौजवाननि खे रोज़गार मिले, चूंडनि में पीपुल्स पार्टीअ खे कामयाब कयो वञे। वज़ीर आज़म जी सदारत हेठि एफ बी आर में सुधारनि ऐं मैशत बाबति धारदार इजलास, बरामदाद में वाद ऐं एफ बी आर में जारी सुधारनि जो जाइज़ो वरितो वियो। सीड़पकारी खे हथी ॾियण लाइ शफ़ाफ़ियत अंटर करार। शहबाज़ शरीफ़ चयो त बरामदाद वारो हदफ़ हासिल करण लाइ मुख़्तलिफ़ शोबनि ते लॻायल टेरिफ मरहलेवार घटि कयो वेंदो। एफ बी आर में बि जदीद टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल करे टैक्स उगाड़ी खे बहितर करे सघिजे थो। वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह जो वर्ल्ड बैंक जे कंट्री डायरेक्टर सां विर्चुअल इजलास, पाणी मनसूबनि ते थींदड़ अगभराई जो जाइज़ो वरितो वियो। के फोर ऑगमेंटेशन प्रोजेक्ट जो बि जाइज़ो वरितो वियो। मुराद अली शाह चयो त सिंध सरकार कराचीअ में पाणी जी मनसूबनि खे बहितर बणाइण लाइ पुरज़म आहे, कम खे बि वक़्त ते मुकमल कयो वेंदो। सिंध हुकूमत नार्गो टैक्स फोर्स ठाहिण जो फ़ैसिलो करे वरितो। नार्गो टैक्स फोर्स पुलिस सां गॾिजी मंशियात ख़िलाफ़ कमु कंदी। घरू मामलनि बाबति सिंध असेंबली जे कमेटी जे इजलास बाद ब्रीफिंग ॾींदे घरू वज़ीर ज़ियाल अंजार चयो त पिनकी केस में मुलविस कंहिं बि शख़्स खे न छॾियो वेंदो। कराची में ज़मीननि जो सिस्टम हलाईंदड़ बासर मुख़्तियारकार एजाज़ उल हसन मुअतल। ज़रियनि मूजिबि एजाज़ उल हसन खे कराची जी ज़मीननि जे रिकॉर्ड में जालसाज़ी करणु, एंटी करप्शन खे ज़मीननि जा केस इंक्वायरीज़ लाइ मोकिले बाद में उहे एंट्री सही करार ॾियण ते मुअतल कयो वियो। एजाज़ उल हसन लैंड यूटिलाइज़ेशन खाते जे मेंबर जो रीडर मुक़ररु थियल आहे। एजाज़ उल हसन कराची जी स्कीम टेरिटरी जो बि मुख़्तियारकार रहियो आहे।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े हैं, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट। कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेक बुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिल जी तकलीफ़ अधु मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलण फालेज शुगर दिमागी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोज़ानो सुबुह 9 AM खां शाम 6 AM ताईं पर जुमो 12 AM ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
3: जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: It's 8:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli glow har niya josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: हर चप्पा हर गोशा
4: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
3: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
5: माल तैयार है ट्रक खड़ा है मजदूर खड़े बस एक चीज का इंतजार है पेमेंट कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है बिजनेस करना आसान नहीं लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट पर्स अकाउंट जिसमें मिले फ्री चेक बुक डेबिट कार्ड बैंकर्स चेक ई स्टेटमेंट ऑनलाइन बैंकिंग अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क अल हबीब करंट प्लस अकाउंट भरोसा भी रफ्तार भी बैंक अल हबीब रिश्ता भरोसे का
3: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
4: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
3: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़

0: जहन, तू ना मेरा हेटर, तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज़ मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघि, ज़ुकाम, दिल जी तकलीफ़, अधु मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलणु, फालिज, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी ऐं बादी बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, बरोज़ जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस: हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
3: तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: के पछतावे से एहतियात बेहतर है. किसी भी तिबी मशवरे के लिए आप डॉक्टर साहब का नंबर डायल कर सकते हैं 03062447700. हैदराबाद पुरानी सब्जी मंडी के सामने MCB बैंक से चंद कदम आगे मेन रोड पर क्लिनिक मौजूद है, सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, जहां रोजाना सुबह 10 से शाम 5 बजे तक मौजूद होते हैं फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज डॉक्टर मोहम्मद अली खान. अपने क्लिनिक पर मरीजों का मुआयना और इलाज करते हैं. अगर आप भी किसी बीमारी की वजह से डिस्टर्ब हैं तो आप क्लिनिक जाइए, चेकअप करवाइए, इलाज की शुरुआत कीजिए. दवाओं की सहूलत जो है वो क्लिनिक पर ही मौजूद है. सेहत के मामले में कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहिए. ज़िंदगी बहुत मिली है, बहुत कीमती चीज़ें एक ही बार मिली है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम आपसे यही

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: दर्द अर्कन निसा, जोड़ों का दर्द, हेपेटाइटिस।
2: अंदर आसिफ जरदारी ऐं बिलावल भुट्टो जरदारी सां मुलाकातूं कंदो, बजट ते पीपुल्स पार्टीअ जा ख़दशा ख़तम करण जी कोशिश कंदो। नए माली साल जी वफ़ाकी बजट में पाणी मनसूबनि लाइ केतिरा पैसा रखिया वेंदा, केटीएन न्यूज़ तफ़सील हथ करे वरिता। सिंध में रुगो पाणी वारे हिकु मनसूबे लाइ पैसा रखण जी तजवीज़। बजट दस्तावेज़नि मूजिबि बजट में पाणी जो रुगो हिकु नओं मनसूबो रखियो वियो। बजट में शामिल नओं मनसूबो दयामीर भाषा डैम मां बिजली जी पैदावार जो आहे। दयामीर भाषा डैम बिजली जनरेशन फैसिलिटी लाइ 50 करोड़ रुपया रखण जी तजवीज़। दासू हाइड्रो मनसूबे लाइ बजट में 25 अरब रखण जी तजवीज़ शामिल। दयामीर भाषा डैम लाइ 25 अरब रुपया रखण जी तजवीज़। दयामीर भाषा डैम लाइ ज़मीन हासिल करण लाइ 7 अरब रखण जी तजवीज़। ईंदड़ बजट में महमंद डैम लाइ 39 अरब रुपया रखण जी बि तजवीज़। वारसक हाइड्रो पावर स्टेशन जी मरमत ते 4 अरब 28 करोड़ रुपया ख़र्च थींदा। नए माली साल जी बजट में कराची ग्रेटर वाटर सप्लाई लाइ 13 अरब रखण जी तजवीज़। सिंधु दरिया ते टेली मेट्री सिस्टम लॻाइण लाइ 5 अरब 76 करोड़ रखण जी तजवीज़ ॾिनी वई। मंगला डैम जी वाध वारे मनसूबे लाइ 4 अरब 59 करोड़ रखण जी तजवीज़। तरबेला जी 5वीं वाध वारे मनसूबे लाइ 3 अरब 40 करोड़ रुपया रखण जी तजवीज़ शामिल। दासू मनसूबे जी कुल ख़र्च जो खातो 1737 अरब रुपयनि खां वधीक आहे। दयामीर भाषा डैम जो खातो 479 ऐं पावर हाउस जी लागत 174 अरब रुपया आहे। महमंद डैम जी लागत जो शुरूआती खातो 309 अरब रुपया आहे। 41 जारी मनसूबनि ते कम तेज़ थी वेंदो। माली ॾुखियायूं वॾनि पाणी मनसूबनि जे वक़्त सिर्फ़ तामीर बणियल।

मुतालबात को सुनना पड़ेगा। जो लोग कहते हैं कि पीपल्स पार्टी अपने वादे पे अमल दरामद नहीं करते, आप उनको याद दिलवाएं कि हम तीन नस्लों से सियासत करते आ रहे हैं और तीन नस्लों से हमारा रिकॉर्ड है। हम अपना जुबान के पक्के होते हैं, वादे करते हैं तो वो वादे करके दिखाते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा जो घर बनाने वाले मंसूबा है वो सूबा सिंध में कर रहा हूँ, जिससे मैं 20 लाख घर बना रहा हूँ। वो 20 लाख घर का और उस घर का जमीन का भी जो मालिकाना हकूक है वो उन घर में रहने वाले खवातीन को दिलवा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं गिलगित बल्तिस्तान को हक मलकियत दिलवा दूँ। मैं चाहता हूँ कि वो लेजिस्लेशन जो हमने पास करवाया, जो हमने पेश करवाया, उस पर अमल दरामद करूँ। और उसके लिए आपकी मदद की जरूरत है, आपकी साथ की जरूरत है।

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिल जी तकलीफ़ अधु मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलणु फालिज शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोज़ानो सुबुह 9 AM खां शाम 6 AM ताईं बरोज़ जुमो 12 AM ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकरन। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327 99

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।